फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 MHz पर आकाशवाणी का यह बैतूल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। आइए सुनते हैं अगला भक्ति गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

श्रुतो, अभी आप सुन रहे थे श्रुति सडोलीकर की आवाज़ में ये भक्ति रचना। लीजिए, पेश है भक्ति गीत, ये भक्ति गीत अनुपमा देशपांडे के स्वर में।

श्रोताओ, सुखविंदर के स्वर में अभी आपने सुना ये भक्ति नगमा। श्रोता, इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

आज विजयदशमी का पर्व है। भारतीय संस्कृति में यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन हिंदुओं के आराध्य श्री राम ने रक्ष संस्कृति के पुरोधा रावण का वध करके सीता जी को उसके बंधन से मुक्त किया था। आर्य संस्कृति की रक्ष संस्कृति पर यह उस समय की सबसे बड़ी जीत थी। यह एक प्रकार से धर्म की अधर्म पर विजय थी। आदिकाल से ही इस पर्व को रामलीलाओं के माध्यम से

श्री राम ने रक्ष संस्कृति के पुरोधा रावण का वध करके सीता जी को उसके बंधन से मुक्त किया था। आर्य संस्कृति के रक्ष संस्कृति पर यह उस समय की सबसे बड़ी जीत थी। यह एक प्रकार से धर्म की अधर्म पर विजय थी। आदिकाल से ही इस पर्व को रामलीलाओं के माध्यम से अति उत्साह और गौरव से मनाने की परंपरा चली आ रही है। आर्यों का एक प्रकार से यह स्वतंत्रता दिवस था। इसी प्रकार जब राम का राज्याभिषेक हुआ, उस दिन दीपावली के माध्यम से जनता ने अपनी अपार प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया। यह उनका एक प्रकार से गणतंत्र दिवस बना। वर्तमान में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विजय को बुराई के ऊपर भलाई की जीत के रूप में पूरे देश में अतिशय उल्लास के साथ मनाया जाता है। सदियों से हम इस पर्व पर रावण का पुतला जलाते चले आ रहे हैं और इसे जलाकर हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। परंतु यदि विचार किया जाए कि क्या इससे बुराई समाप्त हो रही है और क्या देश और समाज में अच्छाई बढ़ रही है, तो इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। रावण के जितने बड़े बड़े पुतले हम प्रतिवर्ष जलाते जा रहे हैं, देश और समाज में आसुरी प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ते जा रही है। भलाई बुराई है क्या? बहुत पहले महर्षि व्यास ने कहा था, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है। पुण्य को भलाई या अच्छाई के रूप में और पाप को बुराई के रूप में माना जाता है। आज हमारा देश सारे संसार के साथ 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। देश में धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अनेक दृष्टियों से विकास हुआ है। आज हमारे देश में अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, धर्मगुरु, नेता, अभिनेता और समाज सुधारक बहुतायत में हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु ये सभी अच्छे मनुष्य हों, इनमें मानवीयता हो, ये सभी निस्वार्थ भाव से परोपकारी हों, ऐसा कहना मुश्किल है। मनुष्य की अच्छाई प्रथमतः उसकी मनुष्यता या मानवीयता से आंकी जाती है। इसके लिए मनुष्य में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उदारता, सहिष्णुता, विनम्रता, त्याग, तप, क्षमा और दया जैसे सद्गुणों की आवश्यकता होती है। इन गुणों की कमी या अभाव से मानवता पशुता और दानवता की ओर अग्रसर होने लगती है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाला रावण भी ज्ञानी था, पंडित था, तपस्वी और अत्यंत बलशाली था। उसके पास अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां थीं, किंतु इन विभूतियों से अहंकारी होकर वह मानव से दानव बन गया। इस कारण वह अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि में लिप्त होकर भय, आतंक, अधर्म, राक्षस और बुराई का प्रतीक बन गया। इन प्रतीकों का कुछ न कुछ निहितार्थ अवश्य है। पर्वों के दिन उन्हें समझना और आत्मसात करना चाहिए। हम सभी मनुष्यों में सद्गुणों और दुर्गुणों की प्रवृत्तियां होती हैं। राम और रावण क्रमशः इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रतीक बन चुके हैं। इसलिए आज के दिन अपने अंदर स्थित इस रावण रूपी दुर्गुणों पर राम रूपी सद्गुणों से विजय प्राप्त करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर स्थित इस रावणत्व का पराभव नहीं होगा, तब तक विजयदशमी की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और साथियों के।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। कलाकार है राम भरोस काजले और साथी।

इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंजनी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पानी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में

0: 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराने का। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसे आप सुन सकेंगे प्रातः 7:50 पर। सुबह 8:30 प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9 से 10 तक आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के मनोरंजक कार्यक्रम का, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10:00, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ

0: जीवन कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित होगा सुबह 10:10 पर। हमारी सखी सहेलियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, इसे सुने सुबह 10:30, जिसमें आज की बात का विषय होगा कामकाजी महिलाओं के अधिकार। हमारी बात सखियों के साथ और कुछ फिल्मी गीत। इसके पश्चात सुबह 11:00 से शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के मनोरंजक कार्यक्रम। शाम 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी में विशेष कार्यक्रम युववाणी पॉडकास्ट, जिसमें आज की बात का विषय होगा बैतूल के युवा बांसुरी वादक राकेश शातनकर से उनके बांसुरी वादन से जुड़े अनुभवों पर राजनंदिनी विश्वकर्मा की अनौपचारिक बातचीत। कार्यक्रम गोधुली होगा शाम 6:05 पर। स्वर होंगे हरीश कुमार के। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सबरस का आनंद लेंगे शाम 6:50 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा मोबाइल का प्रयोग सीमित रखें। सामूहिक कृषि चर्चा में अश्वगंधा और सफेद मूसली की उन्नत खेती कैसे करें, साथ ही लोकगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल और श्रृंखला बातें खेती किसानी की। कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रात 8:30 पर सुनिएगा साहित्य सरिता, जिसमें होगा बैतूल के जाने माने वरिष्ठ कवि सुनील पानसे दास का काव्य पाठ। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9 से 10 तक मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम मेरी पसंद। सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत रात्रि 10:30 पर। कलाकार है KL सहगल। रात 11:00 हिंदी में और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: हम आपको एक बार फिर याद दिला दें,

इसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में कार्य कर अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की कल समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने चयनित 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाने संबंधी सभी निर्माण कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता KGP-12 के 4 शावक कल सुबह एक मान के पास मृत पाए गए हैं। शावकों का जन्म 11 अप्रैल को खुले जंगल में हुआ था। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और सामान्य स्थिति में है। कुनो में मौजूद अन्य सभी चीते भी स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 11 जिले लू की चपेट में रहेंगे। मौसम केंद्र ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल कई जिले लू की चपेट में रहे, वहीं निमाड़ में तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर और झाबुआ सहित 12 जिलों में लू का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज रीवा में वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक और रचनात्मक अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। सम्मेलन में 200 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। शासकीय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पब्लिक विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिसर छोटी बेटमा इंदौर में खेल विधाओं के लिए 200 सीटें स्वीकृत की गई है। इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण एवं बैटरी टेस्ट 15 जून तक क्रीड़ा परिसर में होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 103.1 MHz। पेश है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। इस कार्यक्रम में हम पहला गीत सुना रहे हैं हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है हेमंत कुमार और फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म नौजवान से ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत से संवारा है SD बर्मन ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं हेमंत कुमार के स्वर में फिल्म 16 साल से ये गीत। संगीत है SD बर्मन का, बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तान।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके में। अगला गीत शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, लता मंगेशकर का गाया, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया, फिल्म बरखा से ये गीत।

से ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है SD बर्मन ने और गायक है किशोर कुमार।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों के झरोके से संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में पहली सूचना इस प्रकार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरापाटला में स्वास्थ्य शिविर 13 मई को यानी आज। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में 13 मई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरापाटला में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोरोग चिकित्सक, MD मेडिसिन, दंत रोग चिकित्सक, चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाएगी। डिजिटल हेल्थ ID, आयुष्मान कार्ड, अन्य स्वास्थ्य जांच, मलेरिया, TB, स्किल सेल स्क्रीनिंग, ब्लड जांच, एक्सरे, परिवार कल्याण काउंसलिंग की जाएगी। दूसरी सूचना इस प्रकार है। विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर 14 मई को। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपर्क अभियान के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वितरण केंद्र बैतूल शहर जोन 2 द्वारा 14 मई को वरद लॉन चक्कर रोड बैतूल में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर जोन 2 प्रबंधक ने बताया कि सुबह 10 बजे से आयोजित शिविर में क्लस्टर क्रमांक 4 मोती वार्ड क्रमांक 11 एवं देशबंधु वार्ड क्रमांक 12 के उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याएं सुनी जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से शिविर का लाभ लेने की अपील की है। अब आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: सुबह सवेरे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी की सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गयी। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोलाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने

0: संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस

0: अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आम तौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियां और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बात तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई,

0: दीदी कौन है?
1: दीदी
0: अम्मा जी मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी बच्चों, पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ बहुत ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा आप कौन है?
2: मैं एक मौसम हूँ, मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
2: नहीं समझे?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
3: आइसक्रीम
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: हाँ, लाओ अम्मा,
5: लाओ अम्मा,
4: लो।
5: गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: You were the sound of Bhopal's gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का।

0: समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
1: बहुत ठंडी आज तो नहीं। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
2: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
1: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
2: जरा उधर देखो।
1: अब किधर?
2: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
2: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
1: हाँ।
2: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ।
2: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
1: हाँ, आने दो, आने दो।
3: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ। रुका।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
6: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया हैं।
6: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
6: क्या देखा तुमने?
5: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
6: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
6: कितने लोग रहे होंगे?
5: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
6: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
7: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
0: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
7: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, कागसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
7: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से

0: अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना,
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
2: उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।
3: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
6: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
6: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
6: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
6: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
6: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।
6: बम के फटने की आवाज सुनकर
2: बंकरों से बाहर आए।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु बेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम, देवीश्री प्रसाद का संगीत है, फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

नव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देव नेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के। कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, मत की आई गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो है आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी ही सकता।

हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूँ या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूँ, ये आपको बताने आया हूँ। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

दोस्तों मनहर उदास जाने माने गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

आने के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवा कर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार

मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

बात में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए। और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मंदिर के बारे में इतने सारे

हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गजरक्षक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अब ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वन मंडलाधिकारी डेविड वेंकटराव चनाप ने बताया कि यह ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और उनके व्यवहार की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और उनके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैसे ही हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, यह ऐप वनकर्मियों और क्षेत्र के पंजीकृत ग्रामीणों को SMS, वॉयस कॉल और सायरन के माध्यम से तत्काल सचेत कर देगा। जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी उद्देश्य से जिले में मई माह में 2400 घंटे सुमन हेल्प डेस्क एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हर्षिल पंचोली ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हर समय त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में घर घर जनगणना कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी हर्षल पंचोली ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जनजाति युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा और शोध के अवसर प्रदान करना है। जिले में गेहूं की खरीदी जारी है। जिले में 15 अप्रैल से शुरू हुई उपार्जन प्रक्रिया के तहत अब तक 355 किसानों से 971 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए कुल 1367 किसानों ने पंजीयन कराया है। अनूपपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दी गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज विशेष सुनवाई शिविर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, एरियर एवं GPF भुगतान जैसे प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर के दौरान विशेष रूप से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित भुगतान प्रकरणों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकास खंड कोतमा अंतर्गत ग्राम डोंगरिया कला के प्रगतिशील किसान तारण सिंह ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। वे वर्षों से पारंपरिक रोपाई विधि से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान मेले में उन्होंने धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक की जानकारी प्राप्त की और अपने खेत में सीधे ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई कराई। जहां पारंपरिक रोपाई में प्रति हेक्टेयर लगभग 12 से 15 हजार रुपए तक का खर्च आता था, वहीं सीधी बुवाई में यह लागत बहुत कम होकर लगभग 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के नए निर्मित क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने ICU कक्ष, नेत्र कक्ष, बेड की उपलब्धता एवं चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों से मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में जिले के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं ने मतदान किया।

0: मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों में से मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के 22 सदस्यों का चुनाव किया। अनूपपुर जिला न्यायालय में 302 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ संतोष सिंह परिहार ने बताया कि मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। विगत दिनों जिले के क्षत्रिय समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कोतमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण समाज ने जैत हरि अनूपपुर अमरकंटक में शोभा यात्रा निकालकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा का था और वाचन सर नवनीत चौबे का।
2: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
3: श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। श्रोताओं आप जानते हैं यह कार्यक्रम हम प्रति बुधवार इसी समय आपके रेडियो सेट पर लेकर आते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी, जो कि भोपाल के जाने माने सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन्स रोग के विशेषज्ञ हैं। तो आइए आज फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार।
4: नमस्कार
3: सर। हमारे श्रोताओं ने एक सवाल हमसे पूछा है, डायबिटिक फूड क्या है?
4: बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि बगैर चक्के के तो गाड़ी नहीं चल सकती
3: जी,
4: वैसे ही बगैर पैरों के इंसान अपने जीवन के नित्य कर्म नहीं कर सकता, अपने कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। क्या होता है कि मधुमेह में बहुत सालों से अनियंत्रित मधुमेह में पैरों की नसों में सुन्नपन आने लगता है। इसके साथ साथ जो पैरों की शुद्ध खून वाली धमनियां होती हैं, उनमें रुकावट आने लगती है, जिसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। सुन्नपन आ गया तो कटा फटा आपको समझ में नहीं आएगा, काटा गड़ा की कांच लगा, आप नंगे पैर घूमते हैं, अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते, घाव बनने लगता है और खून की धमनियों से पोषक तत्व और ताजा खून नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो भी घाव को और बढ़ाता है। उसके ऊपर फिर बाहर से आपने साफ सफाई नहीं रखी, आप जागरूक नहीं है, इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन भी मधुमेह में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि कीटाणुओं को बहुत शक्कर बड़ी होती तो खूब खाने पीने मिलता है, खून का दौरा भी कम है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, विकट बात है। उसके साथ साथ नसों का सुन्नपन, तो सारी जो बचाव की प्रणाली होती है वो ध्वस्त हो जाती है और पैर फिर कटने की नौबत आती है। अगर गैंग्रीन बन गया तो कई बार ड्राई गैंग्रीन बनता है तो पैर सूख कर उंगली गिर जाती है, या तो वेट गैंग्रीन हुआ या फिर हड्डियों में इन्फेक्शन चला गया जिसको ऑस्टियोमायलिटिस कहते हैं, तब तो आपको एम्पुटेशन कराना पड़ता है, माने उस भाग पैर का भाग काटना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विकट परिस्थिति है।
3: सर ये वाकई बड़ी भयानक स्थिति है, और इसका अगर हम इलाज की बात करें तो क्या संभव है इलाज इसका?
4: देखिए सबसे बड़ी बात है कि बचाव ही इलाज है, प्रिवेंशन इज द बेटर क्योर
3: जी।
4: सबसे पहले अपना शुगर नियंत्रित करें, जागरूक रहें। आपको एक अच्छा हार्मोन का विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये बताएगा कि पैरों की कैसे देखभाल करनी है। नंगे पैर नहीं चलना है, नहाते समय पैरों के तलवे देखने हैं, कुछ कटा फटा हो तो उसका इलाज होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका जिसको भी डायबिटीज है, वो नहाने के बाद पैर सुखाने के बाद उसमें नारियल का तेल लगाए, इमोलियंट क्रीम मॉइस्चराइजर जो आपको पसंद है वो लगाए। नंगे पैर घर पर ना चलें, बाहर जूते जैसा पहने। मंदिर मस्जिदों में आप जाते हैं तो उपासना जरूर करिए, पर दिन के सुबह सुबह जाइए। दिन चढ़ने पर जाएंगे तो गर्मी के समय में आप पैदल नंगे पैर निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं पैरों में फफोले आ जाएंगे, घाव बन जाएगा, चोट लग जाएगी। एक्यूप्रेशर वाले पार्क भी बहुत होते हैं, तो मरीजों को बहुत आकर्षित करते हैं कि भाई एक्यूप्रेशर वाले पार्क है, हम चलेंगे तो हमारा मधुमेह बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मधुमेह के मरीजों को नंगा पैर नंगे पैर चलना एक अपराध की तरह मैं मानूंगा।
3: सर डायबिटिक फूड हो रहा है, इसके प्रारंभिक लक्षणों को हम कैसे जाने?
4: देखिए जब भी मरीज हमारे पास इलाज के लिए आता है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आपकी हम आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें देखेंगे। इसको कहते हैं डायबिटिक फूड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। जहां हमें लगता है कि सेंसेशंस की कमी है, त्वचा ऐसी है कि हमें जो झुंझुनी हम महसूस करवा रहे हैं वो नहीं महसूस हो रही है, तब हम डॉपलर और बाकी

0: चीजें करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस देखते हैं और उसके हिसाब से तय करते हैं कि बीमारी की सीवियरिटी कितनी है।
1: अब हम यही कहेंगे सर कि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो, उसके लिए क्या सलाह देना चाहिए?
0: उसके लिए तो यही है कि आप जब भी मधुमेह के मरीज हैं, आप साल में एक बार अपने डॉक्टर से पैरों की जांच करवाइए। वो बता दें कि पैरों में सुन्नपन है, जो कि प्रायः बहुत मरीजों में होता है। तो जो मैंने शुरू में बचाव बताए हैं, नंगे पैर मत घूमिए, पैरों का नहाते समय ध्यान दीजिए, इमोलिएंट क्रीम मॉइस्चराइजर लगाइए, अगर कोई घाव हो जाता है तो उसका समुचित और सही समय पे इलाज करवाइए, नहीं तो पैर चौड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, घाव विकृत होने लगता है, बदबू आने लगती है और पट्टी उतारने पे डॉक्टर भी बोलता है कि पट्टी मत उतारिए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना, जरा सी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। आज हमने इस एपिसोड में बात की डायबिटिक फूड की। हमारे पास सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे कि किडनी में भी क्या दिक्कत हो सकती है। अगला एपिसोड हमारा किडनी पर आधारित होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8878112343। नंबर पुनः सुने 8878112343। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए मनु सक्सेना और डॉक्टर सचिन चेतावर का नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, ये आकाशवाणी बैतूल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है धनौरी तेलीवाला से। फरमाइश करता है निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने और आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मानी की।

0: सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं शफाकत अमानत अली और सुनिधि चौहान के स्वरों में। संगीतकार है विशाल शेखर, गीतकार है विशाल ददलानी और फिल्म का नाम है आई हेट लव स्टोरी। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है बटीडा रोड मंडी डबवाली से। श्रोता है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की, तानिया नारंग।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली पेशकश है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, शीमा, डॉक्टर अमित, सचिन मास्टर, समर, राज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, लिखा है कुमार और अहमद अनीस ने, धुन बनाई है तोशी सबरी और जवाद अहमद ने। फिल्म का नाम है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया।

0: पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: So girls, क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम में अंतिम व्हाट्सएप फरमाइश की ओर। फिल्म तुम मिले से बोल लिखे हैं सईद कादरी ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और आवाज है केके की। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है सदर बैतूल मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है पुष्पेंद्र काजले, प्रिंस बेले, सचिन कोसे, अभिषेक, आकाश, ओम प्रकाश गावंडे।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुन रही सभी सखी सहेलियों और श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी योगिता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चहेते कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, जैसा कि आप जानती कि आज है बुधवार और जिसमें हम शामिल करते हैं हमारी आज की श्रृंखला हमारी बात सखियों के साथ। तो सखियो, इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे मन की आवाज को लेकर। उससे पहले चलिए बात करते हैं आज के विषय की ओर, कामकाजी महिलाओं के अधिकार। सखियो, आज के समय में हर महिला स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकती है। घर को संभालने से लेकर देश को आगे बढ़ाने तक का हुनर रखती है। हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या हमारी सभी बहनें अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं? और क्या उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है? आप में से अधिकतर का जवाब होगा हाँ और कुछ का जवाब होगा नहीं। सखियो, यहाँ हम आपको बता दें कि जो महिलाएं संविधान को अच्छे से जानती हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी है, और जो नहीं जानती हैं, तो आइए जानते हैं महिलाएं आज घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस, किसान, मजदूर जैसे ऐसे कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कई कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके काम के अनुसार समान वेतन नहीं दिया जाता। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। तो सखियो, सबसे पहला अधिकार है समान वेतन का अधिकार। कोई महिला या पुरुष दोनों ही यदि एक जैसे काम करते हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, ना कि कम। दूसरा अधिकार है कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार। सखियो, हर महिला को अपने कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी सहकर्मी महिलाओं के मान सम्मान का ध्यान रखें। कार्यस्थल का माहौल खुशनुमा और सुरक्षित होना चाहिए ताकि हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और हाँ, यदि वहाँ उनके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी की जाती है या उन्हें परेशान किया जाता है तो उनकी शिकायत सुनी जानी चाहिए और उसका निवारण भी तुरंत किया जाना चाहिए। तीसरा अधिकार है मातृत्व अवकाश। सखियो, जब कोई महिला माँ बनती है

तो तब उन्हें कुछ समय की छुट्टी मिलती है ताकि वह अपने बच्चे और अपना ध्यान रख सके, और यह उनका कानूनी अधिकार भी है। सहसंचालिका से क्यों, इसके तहत हम आपको बतला दें कि महिलाओं को काम करने के लिए कुछ निश्चित घंटे मिलते हैं और आराम और छुट्टियों का भी अधिकार होता है। किसी महिला से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाना या काम करने के लिए उन पर दबाव डालना ये सही नहीं है, और ऐसा यदि आप में से किसी के साथ होता है तो आप इसका क्या करें कि आप अपने परिवार वालों से बात करें, अपने सहकर्मियों से बात करें। यदि इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो जो संस्था प्रमुख है उनसे आप मदद ले सकती हैं, जो आपकी बातों को समझेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। सखियों अपने अधिकारों को जाने, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सखियों ये तो थी हमारी आज की बात, और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले लेते हैं यहाँ एक छोटा सा अंतराल।

0: काम करने के लिए उन पर दबाव डालना ये सही नहीं है। और ऐसा यदि आप में से किसी के साथ होता है तो आप इसका क्या करें कि आप अपने परिवार वालों से बात करें, अपने सहकर्मियों से बात करें। यदि इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो जो संस्था प्रमुख है उनसे आप मदद ले सकती हैं, जो आपकी बातों को समझेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। सखियो, अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सखियो, ये तो थी हमारी आज की बात। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले लेते हैं यहाँ एक छोटा सा अंतराल।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बात सखियो के साथ, यानी आपके साथ। तो सखियो, आज हम बात करेंगे मन की आवाज। सखियो, हम सबसे सबके मन में कई बातें ऐसी चलती हैं जो हम किसी से कह भी नहीं सकते और किसी से छुपाना भी नहीं चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा जीवन में होता है, क्योंकि जीवन में कभी खुशी तो कभी गम, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सपनों को साकार करने का मन होता है तो कभी सपने टूटने का डर भी होता है। ऐसी कई बातें होती है हमारे मन में जो शायद हम खुलकर किसी से कह भी नहीं पाती। तो सखियो, आज का ये कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपनी मन की आवाज को अनसुना कर देती हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी अपने मन की आवाज को जरूर सुनिए और समझने की एक कोशिश भी करिए कि एक छोटा सा प्रयास है जो हमें अपने मन की आवाज सुनने के लिए एक संकेत देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: ना काट दे। पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सखियो, अंतराल में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मन की आवाज। सखियो, मन की आवाज बहुत ही सच्ची होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन भी खुश होता है, और जब हम या अपना कोई दुखी होता है तब हमारा मन ही है जो हमें हिम्मत देता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं या गलत रास्ते पर जाते हैं तब यही मन हमें गलत काम करने से रोकता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सिक्योरिटी किसी तरह हर घर की धुरी महिला होती है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी बनकर हर रिश्ता निभाती है। सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते अपने मन की बातों को कहीं ना कहीं अनसुना कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सखियो, याद रखिए कि अपनी भावनाओं को परिवार के साथ साझा ज़रूर करें, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप भी परिवार का हिस्सा है। आपकी बातें, आपकी सोच, जब तक आप अपने मन की बात नहीं कहेगी, परिवार वालों से नहीं साझा करेगी, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हम बच्चों को समझाते हैं ना कि मन की बातें बताने से मन हल्का होता है। यही बात से क्यों हम पर भी लागू होती है। आज वर्तमान में हर महिला घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां उठा रही है। ऐसे में तनाव का होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें। बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ हंसे, अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी सहेलियों के साथ पुराने दिनों को लेकर बातें करें, और आज जो आपके बीच में समस्या है उसके लिए भी आप उनसे बातें कर सकती हैं। साथ ही जब भी आपको समय मिलता है तो संगीत ज़रूर सुने, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है सखियो जो हर दिल को, जो बातें होती है हर दिल की उसे आसानी से कह देता है, और बच्चों के साथ थिरकने पर मजबूर भी कर देता है।

सखियों, इसी प्यारे से गीत के साथ ऐसी कई हमारी सखियां हैं जो बच्चों के साथ झूम उठी होगी और मन तो करता ही है। इसी तरह सखियों, मन में तो ऐसी कई इच्छाएं होती हैं जिन्हें बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है आपके मन की आवाज़ जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। सखियो, जब कोई महिला अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो सबसे पहले उसका जो मन है उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है और ऐसे में जब परिवार का साथ मिल जाए तो आगे बढ़ने और कुछ करने और जीने की तमन्ना और भी बढ़ जाती है।

सखियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मन की आवाज़ हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने सपनों पर विश्वास ज़रूर रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनिए और अपने सपनों को पूरा कर उन्हें पंख दीजिए।

सखियो, इस प्यारे से गीत के साथ आपके मन के आवाज़ को भी दीजिए पंख और उड़ जाइए अपने सपनों की उड़ान को लेकर। तो सखियो, ये तो थी हमारी बात आपके साथ मन की आवाज़ को लेकर। और चलिए सखियो, अब आपको बतला देते हैं कल के आकर्षण के बारे में। सखियो, कल बात होगी महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगार से इस विषय पर। साथ ही मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। आपका मनोरंजन करवाएंगे कुछ फिल्म संगीत के साथ। और सखियो, इस सफर में आपके साथ होगी हमारी सखी योगिता जायसवाल। सखियो, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी योगिता को। नमस्कार।

राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

श्रोतो, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन, इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और उनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमानी का संगीत था सूजी दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिड़ी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगतिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेया घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मेकिकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: राम लखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोदास अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनु उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को। आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में है और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जाबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनीर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मनु उदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना, कंचन मनोज।

उल्लास और आनंद की आवाज है इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोज व्यास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं और अब सुनते हैं मनोज व्यास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोचकर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहां पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है सौ अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढरे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपना हरा ही चला जाए सपना।

0: चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन्नाडे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा, तो बिल्कुल सही बात तो है क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली है उसे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफी सुविधा हो जाती है ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी, तो आप किस तरह का पहलू देखते हैं अपने जीवन में? और हमने पूछा था कि जीवन में अगर कोई मुश्किलें आ जाए तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं, क्या आप उस मुश्किल को लेकर थोड़ी और मुश्किल में पड़ जाते हैं या गाते झूमते नाचते अपने उस मुश्किल से पार हो जाते हैं अपने विचारों के जरिए? हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उम्मीद है कि ये गीत भी शायद आपके लिस्ट में शामिल किसी एक गीत से मिलता हो।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आंचल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, और हमारे टेक्स्ट और इबारत को देखकर हमारे कुछ साथियों ने शब्द चुने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज इस कार्यक्रम में हो। हमारे एक साथी ने लिखा सवाल पाया, हालांकि उनके साथ गाने भी लिखे हैं लेकिन हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं। सवाल पाया कहां जवाब महका गाता झूमती सपना रचना जाने कहानी सहारा बेसहारा जीता हारा, ये शब्द हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जिनके जिनसे संबंधित गीत हम सुनवाने वाले हैं, ऐसा इनका अनुमान है। हमारे कौर साथी कहने कि कुछ शब्द हैं जिंदगी पहेली कोई समझ सवाल जवाब ख्याल जीना सहारा अनजानी बहती झूमती गाती जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं और इनसे बनने वाले गीत भी इस क्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे और साथी ने कहा कि भाई आज गाने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी कॉमन गाने बजते हैं जो लगभग सबने लिखे हुए होते हैं, मैं थोड़े अलग यानी रेयर गाने पोस्ट करती हूँ जिसका लिस्ट में होना असंभव ही है, तो इसलिए वो गाने पर कमेंट नहीं करी। भाई ये तो क्या बात हुई, हो सकता है कि आपके वो रेयर गीत ही हम चलाना चाह रहे हूँ, ऐसा थोड़ा हो नहीं सकता भाई। इस तरह से आप अगर कहें कि हम तो इसमें भाग नहीं ले रहे तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है जिंदगी पहेली सवाल जवाब मुश्किल ख्याल महका मन नदी धारा उलझन गाती झूमती रचना या रचती अफसाने हकीकत सपना कहानी अनजानी जानी पहचानी सहारा बेसहारा जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, तो इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे कौर साथी

बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथ ही हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज की भारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है।

0: साइलेंस।
1: वो तो है स्कूल का टीचर हर दम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
1: क्या कहा?

0: अब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट। किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हो और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हो और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहते हैं कि भाई जिंदगी

पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए, तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई, तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे स्वप्ने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथवा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले। शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये इन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे साथी कहने कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चले और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 1,00,000 फॉलोवर हैं, 1,00,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी, माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हो और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बम्बई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बम्बई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बम्बई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे और साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारी और साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

विरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़

0: रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर देश के उस अडिग संकल्प को याद किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिखाया कि कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों के दौरान अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गुजरात और असम की हालिया यात्राओं में यह बदलाव पहली बार देखने को मिला, जबकि एसपीजी की सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले की तरह बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों बिना नई खरीद किए जहां संभव हो सके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की उनकी 7 अपीलों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही सभी मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों को भी कम से कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के मुंगवानी गांव में लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में एक साथ 1,835 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल में कल एक दिवसीय इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुई, जिसके बाद फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कॉन्क्लेव में फ्रांसीसी कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू समेत कुल 8 लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता के केजीपी 12 के चारों शावकों कल सुबह एक मांग के पास मृत और शतविशत हालत में मिले। महज एक महीने पहले 11 अप्रैल को जन्मे इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम जिंदा देखा गया था। शुरुआती जांच में आशंका है कि किसी दूसरे जंगली जानवर ने इन्हें मारा है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। वन विभाग ने बताया कि शावकों की मां पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। कुनो के बाकी सभी चीतों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नीट यूजी परीक्षा की कथित पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम जयपुर पहुंची और राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी कई लोगों से पूछताछ की। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना करीब 6% उछलकर करीब 1,62,000 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 6.4% की बढ़त के साथ करीब 2,96,000 रूपये प्रति किलो का कारोबार कर रही है। दरअसल सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसकी वजह से बाजार में यह भारी उछाल आया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के 11 जिलों के साथ साथ भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी अगले 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि निमाड़ समेत कई जिलों में शाम का मौसम पलटा और तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम का यह मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज

कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर उमंग ऐप पर परिणाम देख सकते। इस वर्ष 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। तो ये था हमारे समाचार इस बुलेटिन के, और अगला बुलेटिन सुनिए शाम को 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 15 मिनट होने को है, थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री विधायक अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय

दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट
फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

आखिरी दांव फिल्म के इस गीत में आपने सुना आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी की बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सखी सहेली के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुन पाएंगे। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर।

ठोक तुम अंतर छू छू छू सिंध बाद देते लड़कू मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें। साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त

0: खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा,
1: मजेदार चटपटी चाट का हाँ, जिक्र होने वाला है।
0: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना, कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल,
0: आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था
1: मुझे
0: मन।
1: ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
0: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
0: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में, हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
0: और
1: है।
0: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना?
1: भाई मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
0: आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
0: इसमें हमें संतुलन रखना है।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
0: बिल्कुल आनंद,
1: संतुलन जरूरी है,
0: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल

0: किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
1: कितनी
0: वो
1: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र है और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी, क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ रहते
1: और काम
0: थे।
1: कितना करते थे पुराने जमाने के लोग,
0: बहुत लोग समझ, घर में चक्की भी चलना
1: हाँ।
0: है तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है,
0: पानी भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ,
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की
1: हाँ,
0: सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर भर के लिखे हैं।

0: मंजरी रही थी इस गाने है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
1: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
0: बहुत सारे हमारे साथी,
1: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
0: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या बात है?
1: बहुत सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत

0: लोग खाने के लिए जीते हैं और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी। ऐसा लग रहा
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियां होती है वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
1: खाया जाता है,
0: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
0: हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
1: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
0: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
1: एक हमारे लिखते मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा।

0: कर रहा होता है ना। ये
1: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन इसमें मजा आता है जिसको लग रहा है मैंने दोबारा फट लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना। आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। और सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है कि लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। हाँ,
1: हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे,
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला,
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था तुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं, और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: सचमुच हमारे देश में बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए चाहे आप लखनऊ चले जाइए चाहे आप गुजरात आ जाइए चाहे महाराष्ट्र आ जाइए राजस्थान चले जाइए और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खूब खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंशी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुँचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
3: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटे तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
2: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो पे काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई हाँ। जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
3: जी,
2: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था
3: जी जी।
2: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक एमसी के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
3: जी।
2: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
3: जी।
2: और न सिर्फ आऊंगा
3: बल्कि हेड करेंगे
2: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
3: वाह वाह वाह,
2: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
3: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
2: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
3: बिल्कुल,
2: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
2: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे,
3: गंगा प्रसाद जी,
2: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
3: जी,
2: और
3: जी,
2: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
3: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
2: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
3: यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
2: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का
3: सेतु। बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
2: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
3: ओके।
2: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
3: जी।
2: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
3: क्या बात,
2: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले। और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे। वो
3: बिल्कुल
2: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
3: जी,
2: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
3: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
3: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए।
2: हाँ,
3: अनुराधा,
2: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
3: है ना, ये गाना सुन,
2: मेरा पसंदीदा गाना है।
3: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ, थे, वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी
0: बिल्कुल,
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी।

0: बाबा।
1: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, जी भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता
0: खुद था। गाते था।
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसको धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
0: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी,
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी डायन उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: बाबा
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हा हा हा
1: हा। उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
0: बाबा।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हा।
1: तो उसका मैंने कौवा चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौर में जब आप,
1: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: इनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।

0: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी,
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे?
0: हाँ, बिल्कुल सब जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी, मतलब
1: जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब
1: कुछ
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
0: था। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे,
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: मिला। बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुनाऊं?
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: है, नवगीत का शुरू हुआ था तो ये अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं से,
1: हाफती हवाओं से, क्या बात है,

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में?
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो, और हमारा संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, जिनको हमने बचपन में आगे
0: बैठे सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया। माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए, मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत के पास आती कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घरेलू नाम,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं नहीं
0: उसका जिक्र ना ही करें
1: तो ये एक अच्छा बचपन भी था, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: घर तो में वो पारिवारिक के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनकी, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना खाए, सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक

0: मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली है।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एकता बचपन
0: क्योंकि
1: ये जो बचपन के जो दिन हैं उनके नाम ये गाना है।
0: जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: अब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही होगी।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ज जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
0: जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में।

0: और फिर जैसा होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे, तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो सारी बात कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया, गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है, तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल, हाँ ये मुझे नहीं पता।

0: कहाँ थोड़ा हाई वॉल्यूम को कैसे पिच को अंदर के अंदर करना है, तो ये तो टेक्निकलिटी हो गई। बट रियाज की अगर बात किया जाए तो ये धीरे धीरे एक तरीके का व्यायाम है।
1: ये एक प्रकार का मेडिटेशन भी हो चुका है।
0: हाँ, डेफिनेटली मेडिटेशन तो है ही,
1: जी
0: क्योंकि एक तो ये श्री कृष्ण का वाद्य है,
1: जी
0: इस पर बहुत बात तो कैसे ही करें क्योंकि ऑलरेडी ये भगवान का वाद्य है।
1: जी
0: और मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन तो होता ही है, और आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बोल सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि जब आप इसमें बहुत ही जब डूबने लगते हैं तो फिर आपको एक कनेक्शन भी समझ में आता है।
1: जी ये बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि इसे स्पिरिचुअल भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप
0: बिल्कुल
1: भगवान से कनेक्ट होते हैं, सीधे ईश्वर
0: जी
1: से
0: जी जी
1: आपका संपर्क होता है, आपकी बातें आप होती हैं उनसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी ध्वनि भी इतनी मधुर है कि वो लोगों को बहुत अंदर कनेक्ट करती है, क्योंकि
1: जी
0: ये दिल से बहुत करीब वाद्य भी हैं।
1: जी
0: और डेफिनेटली कि आपके अंदर के जो भाव है वो आप आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है आप प्रकट कर रहे हो,
1: जी
0: तो बहुत दिल से जुड़ा हुआ वाद्य है।
1: जी राकेश जी, मैंने सुना है कि कोई आम भक्त है और वहीं पर कोई संगीत के जरिए ईश्वर को पूजता है, तो उसकी बात जल्दी पहुंचती है जो संगीत के जरिए ईश्वर को पूजता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: यहाँ पे जो बात है तो वहाँ पे मुझे जितना एक्सपीरियंस है,
1: जी
0: मैं बहुत ज्यादा तो नहीं इस पर बोल सकता हूँ, बट हाँ मुझे जितना फील हुआ है कि आप भी जानते हैं स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट है वो बहुत सिमटा हुआ नहीं है, ये सागर की तरह
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: सबको अलग अलग तरीके से या अलग अलग एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं। कहते हैं
1: जी
0: कण कण में ईश्वर होता है, तो
1: जी
0: कहीं भी कुछ भी, जैसे मेरा एक वाक्य है
1: जी
0: कि मैं एक बार सारनी के ही जंगल में बैठा हुआ था बांसुरी बजाने,
1: जी
0: जबकि मैं बहुत सीखा हुआ नहीं था उस टाइम पे,
1: जी
0: मैं प्ले करता था बजाता था बट बहुत सीखा हुआ नहीं था।
1: जी
0: जब मैं नदी किनारे बैठा, मेरे साथ में मेरे पहले जो गुरु है मैंने बताया, तो वो भी मेरे साथ में थे, उन्होंने बोला कि आप बांसुरी निकालिए और बजाइए अपनी धुन में।
1: अच्छा
0: मुझे याद है कि मैं भी ऐसे एकदम मग्न होके बजा रहा हूँ,
1: जी जी
0: और मैं आई थिंक कि 15 मिनट तक के मैं बजाते रहा बिल्कुल आग बंद करके, और उसके कुछ टाइम बाद में उधर से 50 to 70 गाय पूरी की पूरी दौड़ के आ गई, और मैं इस साइड में हूँ बीच में नदी, और जस्ट उस पार पूरी की पूरी गाय आके थम गई और बैठ गई, और
1: जी
0: मैंने उस टाइम पे कंटिन्यू 1 घंटा प्ले किया है, बांसुरी बजाई है,
1: जी
0: और वो वहां से हिली भी नहीं, उनका जो चरवाहा था जो चराने वाला उनको मार रहा है कर रहा है वो हिली ही नहीं।
1: जी
0: तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए आज तक भी बहुत कमाल का है।
1: जी
0: अभी उसको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि आई थिंक मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ तो ईश्वर कृपा थी उस दिन,
1: जी जी
0: तो मेरे लिए भी बहुत वो अचंभित वाक्य है।
1: जी बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सभी जीवों को मंत्रमुग्ध कर सकता है, उसमें जरूर ही ईश्वर का वास है।
0: तो मुझे उस समय ये फील हुआ था कि अभी तक तो हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी है
1: जी
0: कि कृष्ण जी के बारे में भी,
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल
0: रासलीला हुआ करती थी, वो बांसुरी बजाने का उनका
1: हाँ
0: टाइम होता था, और शिव जी एक बार सुनकर आ गए थे
1: जी
0: और उनको यमुना जी शायद आई थी उनको जाने नहीं दिया
1: जी
0: था,
1: जी
0: तो उनको अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी जाने के
1: जी
0: लिए। तो मुझे जरूर ये फील होता है कि कहीं ना कहीं ये साक्षात कुछ कनेक्शन तो रहा होगा इस चीज को लेके,
1: जी
0: मतलब ऐसे ही तो नहीं रहा होगा,
1: जी
0: क्योंकि मैंने खुद ये एक छोटा सा क्षणिक मात्र का ही एक्सपीरियंस किया, बट मुझे समझ में आया उस दिन पूरी 60-70 गाय बैठकर एकदम ऐसे सुन रही हैं,
1: जी
0: और मैं भी अपनी धुन, और जैसे मैंने बजाना बंद किया वो सब चली गई।
1: जी ये कितनी प्यारी बात बताई, आप जैसा बता रहे थे मेरे आंखों
0: बिल्कुल
1: के सामने दृश्य आ रहा था वैसा वैसा। राकेश जी मैं चाहूंगी कि ये सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरीली धुन
0: जी,
1: आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मैं थोड़ा कुछ सुनाता हूँ।
1: जी जी

0: बहुत खूबसूरत राकेश जी, इसे सुनकर सच में मेरा मन एकदम शांत हो गया। मैं कहीं डूब गई थी इस सुरीली धुन में और मुझे सच में अब महसूस हो रहा है, आज मैंने फील किया कि श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी की हमने जो भी कथाएं सुनी वो कितनी सच थी।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम तो कुछ क्षणिक मात्र भी नहीं है
0: जी,
1: उन्होंने तो जो भक्ति भरी बांसुरी बजाई होगी और पूरा संसार जो है उनका मोहित हो चुका है, तो वो तो पता नहीं क्या लेवल होगा।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: और बस एक छोटी सी कृपा है कि मैं भी उनका वाद्य बजा पा रहा हूँ अभी
0: जी,
1: तो मैं अपने आप को बहुत क्या कह सकता हूँ,
0: ईश्वर की बड़ी कृपा है,
1: बड़ी कृपा ही है। सौभाग्य मेरा कि मुझे ये रुझान पैदा हुआ।
0: जी बिल्कुल, ईश्वर की कृपा ही कहेंगे इसे, आप उनके इस वाद्य यंत्र को, ऐसे यंत्र को जो मतलब इसका एक अलग अपना दर्जा है, क्योंकि इससे सभी जीव आकर्षित होते हैं, सभी इससे जो मुझे अभी महसूस हुआ आपने जब बांसुरी बजाकर सुनाई तो मन शांत हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो आजकल लोगों के जीवन में भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना स्ट्रेस होता है, उन्हें भी काफी फायदा मिलेगा इससे।
1: बिल्कुल,
0: मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को कहीं ऐसी सुरीली धुन सुनने को मिले तो उन्हें बिल्कुल ठहर जाना चाहिए।
1: या बिल्कुल, इसलिए ही आजकल लोग थोड़ा मेडिटेशन की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अभी ये टाइम आ गया कि लोगों को पीसफुल म्यूजिक सुनने के लिए फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं।
0: जी
1: जी
0: हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल जी, जी. देखने को मिलता है। राकेश जी, जैसा इस दौर में ये जो दौर है डिजिटल है, जब सब लोग छोटे छोटे वीडियो और रील्स पसंद करते हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 15-20 सेकंड में बांसुरी की गहराई को समझना मुमकिन है?
1: नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मिजाज होता है हर एक कलाकार का।
0: जी,
1: जैसे कि अभी मैं एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा रील देख रहा था
0: जी,
1: जिसमें कैलाश खेर जी ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है
0: जी,
1: कि आप कलाकार को बोलते हैं कि अरे आप एक थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए, तो आप कभी सचिन तेंदुलकर को बोलते हो क्या एक बार छक्का मार के बता दीजिए?
0: जी,
1: है ना, या किसी शूटर को बोलते हैं कि एक बार गन, एक बार फायर करके दिखा दीजिए? तो ऐसा सिर्फ कलाकार के ही साथ क्यों होता है कि आप जो है बस थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए? बेसिकली बात उस चीज पे फोकस मेनली यह है कि हर एक कलाकार बोले तो आप एक म्यूजिशियन, मतलब एक संगीत कलाकार को कह लो, या तो आप क्रिकेटर्स कह लो, कोई भी एनीबॉडी जो कला आर्ट के फील्ड में है
0: जी,
1: जो अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए एक मिजाज होता है, एक मूड होता है
0: जी।
1: हमेशा कोई सिक्स मारे ऐसा नहीं होता, कभी जीरो पे भी आउट होता है, तो ये कोई रोबोटिक काम नहीं है
0: जी, बिल्कुल,
1: कि आपने बटन दबाया और काम चालू हो जाएगा
0: जी।
1: ये टोटली आपके माइंड पे, आपके पीस पर इंटरनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ शो होता है जब बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत गजब हो गया आज तो, मतलब आज तो थोड़ा ही बजा

0: ना था, बट पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूड ही नहीं लग रहा होता है,
1: जी
0: तो वो आधा घंटा भी ऐसा लग रहा होता है कि एक घंटे की तरह है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरनल एनर्जी और आपके मूड पर। तो मुझे लगता है 15 सेकेंड में तो आप क्या ही इस चीज को समझ सकते हैं। बट ओके, बट ठीक है, अभी हम अगर टाइम को देखते हुए और जिस तरीके से फास्ट जनरेशन चल रहा है
1: जी
0: और मीडिया बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी है, वो आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसे कि आपको अभी 15-30 सेकेंड में, कुछ चीजें ऐसे भी होती है कि 15 सेकेंड में बहुत कुछ भी दिख जाता है
1: जी
0: कि आप एटलीस्ट, ठीक है अभी लोगों के पास नहीं टाइम है 1 घंटे का वीडियो देखने के लिए, तो 15 सेकेंड में भी वो लोग कुछ तो देख ही लेते हैं। तो फिर आई थिंक कि मुझे लगता है कि उस हिसाब से आजकल अगर एक संगीतकार भी अगर कुछ वीडियो बनाएगा तो वो 15 सेकेंड में भी ही चाहेगा कि वो उसका निचोड़ डाल सके, कि
1: जी
0: बहुत अच्छी कुछ चीज पेश कर सके जो बहुत अट्रैक्टिव हो।
1: जी वो कम समय में भी कुछ ऐसा पेश कर देगा जो लोगों को पसंद आए।
0: हाँ, जो लोग को कनेक्ट करें,
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि वो उसको आप बहुत सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते,
1: जी
0: क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है उससे आप उनको जज नहीं कर सकते, आई
1: जी
0: थिंक।
1: राकेश जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि बांसुरी सुर सही नहीं पकड़ रहा, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं जब बांसुरी आप ऐसा लगे आपको कि नहीं आज बांसुरी मेरी बात नहीं सुन रही है?
0: जी उस टाइम पे खैर अभी कोशिश करते कि बार बार मूड बने, बट कभी कभी नहीं बनता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ऑरा भी होता है।
1: जी
0: किसी किसी जगह ये होता है कि कई बार ऑडियंस भी ऐसी होती है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाती
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो
1: जी
0: वो एक ऑडियंस का और आपका एक बातचीत बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: जी
0: तो कोशिश करते हैं कि मूड बने, बट होता है नहीं होता है, क्योंकि ये तो संगीत की चीज ही ऐसी है, दिखाई नहीं देते, सिर्फ हवा से बात कर सकते हैं आप।
1: जी राकेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है
0: जी
1: कि जो बांसुरी की धुन होती है इतनी सुरीली होती है, इसमें ना कोई तार होता है, ना कोई बटन होती है,
0: ना कोई चमड़ा होता
1: ना
0: है।
1: कोई चमड़ा होता है, तो इसमें इतनी जान कहाँ से आ जाती है?
0: हाँ, ये क्योंकि अभी ये तो इस पर तो मेरा भी कुछ आंसर देना बड़ी मुँह छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, बट अभी इस पे तो अभी ये है ही, वाद्य तो श्री कृष्ण का बनाया हुआ है, तो वो कैसे जान क्रिएट हुई है, बट कि पूरे संसार को उन्होंने मोह के रख दिया सिर्फ एक बांस के टुकड़े से।
1: जी जी
0: बट हाँ जरूर, कि अगर अगर हम अगर टेक्निकल देखेंगे तो थोड़ी अलग बात है कि एक बैम्बू का बांसुरी होता है और बांस का बांसुरी है, तो उसमें जो साउंड क्रिएट होता है तो वो साउंड एक बैम्बू की आवाज़ है।
1: जी
0: कुछ वाद चमड़े से बनते हैं, चमड़े के साउंड होते हैं, ये बैम्बू का साउंड है इसमें, क्योंकि बैम्बू में छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
1: जी जी
0: स्पॉट होते हैं, तो वो एक साउंड क्रिएट करते हैं,
1: जी
0: ब्यूटीफुली
1: जी
0: साउंड क्रिएट करते हैं। उसमें भी देखा जाता है कि बैम्बू बहुत सीजन किया हुआ है या न्यू बैम्बू है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है, अगर हम अगर ऐसे फिजिक्स के तौर पर देखा जाए तो,
1: जी
0: फिर वो कितनी ट्यून है नहीं है,
1: जी
0: है ना। तो ये तो थोड़ा मेकिंग का विषय हो गया।
1: जी ये जो बांसुरी की धुन होती है ये कितनी प्यारी होगी, ये किस बात पे निर्भर करती है? वो जो फूंक हम उसमें मारते हैं या फिर हमारी
0: दो
1: भावनाएं?
0: चीजें हैं, अगर मैं एक संगीतकार के तौर पे बोलूं
1: जी
0: और एक साधक के तौर पर,
1: जी
0: तो एक तो ये है कि बांसुरी आपकी बहुत सुरीली होना जरूरी है,
1: जी
0: और दूसरी बात ये है कि आपका भाव होना बहुत अच्छा जरूरी है।
1: जी
0: वही वाली बात है कि जितना अच्छा मन से अंदर आप होंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लूट में वो चीज दिखेगा। लेकिन ऐसा है कि आप बेसुरी फ्लूट में तो नहीं दिखा सकते ना,
1: जी बिल्कुल
0: वो भी एक बात है। तो वो दोनों का तालमेल होता है तभी जाके कुछ अलग लेवल की चीज निकलती है,
1: जी
0: कि आपका अंदर से भाव भी बहुत अच्छा है और आपका वाद्य भी बहुत अच्छा है।
1: जी

0: क्योंकि अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो आपका जो आपका अगर हथियार ही प्रॉपर नहीं है तो
1: जी
0: कैसे युद्ध करेंगे आप?
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: आपका
1: बात है।
0: साज जो है वो भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपका साथ दे सके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से।
1: जी
0: जी
1: राकेश जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोताओं को भी जरूर आपकी बातों से कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर
0: जी
1: मिलेगा।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मौका दिया
1: जी
0: आकाशवाणी के लिए, और मैं नए अपने कुछ नए तरीके से या अपना अनुभव शेयर कर पा रहा
1: जी
0: हूँ जो कि मैं भी ऐसे ही सुनकर सीख कर ही बड़ा हुआ हूँ
1: जी
0: और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बड़े लोगों से बुजुर्गों से सीखी हुई हैं।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि मुझे जो भी अच्छी चीज़ मिली मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया,
1: जी
0: तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है।
1: जी राकेश जी, अभी हाल ही में आपने किसी फिल्म में अपना म्यूजिक दिया है?
0: अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र एक मूवी आई हुई
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसमें फ्लूट का पूरा बैकग्राउंड है। और भी कई सारे टाइटल्स के लिए मैंने प्ले किया, रिसेंटली कोटेक के लिए किया हुआ है और महिंद्रा के लिए किया हुआ है, और फिल्मी दुनिया के सिंगर्स लोगों के साथ भी मेरा काफ़ी बजाना है, जैसे सुखविंदर सिंह जी के साथ मैं उनके साथ बांसुरी बजा रहा हूँ उनके शोज़ में, लाइव शोज़ में, सोनू निगम जी के साथ में हूँ, श्रेया जी के साथ में हूँ, और हाल ही में भी इंडियन आइडल्स में भी मैंने बजाया हुआ
1: जी
0: है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और मेरा खुद का भी अपना एक बैंड है द इंडियन वाइब्स, जिसमें काफ़ी सारे क्वायर्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उसका भी काफ़ी काफ़ी सोच वगैरह हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए भी।
1: राकेश जी, जो युवा है वो इस फील्ड में जो आना चाहते हैं,
0: जी
1: बांसुरी सीखना चाहते हैं,
0: जी
1: उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जिनको बांसुरी सीखना है या अभी उस पर मुझे लगता है कि उस पर डिपेंड करता है कि मैं ना सिर्फ बांसुरी के लिए बोलूँगा, मैं बात करूँगा आप किसी भी फील्ड में हो,
1: जी
0: चाहे आप संगीत सीख रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, एक्स वाई जेड, तो आप कुछ भी जब करने निकल गए हो ना तो आपको ये मान के चलना है कि मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा एक चीज़ दिखती है कि अगर आप हमेशा आदमी छोटे से ही बड़ा बना है, बड़े से छोटा नहीं बना
1: जी
0: है, जस्ट
1: बिल्कुल
0: लाइक। और अगर आप इसे देखेंगे तो आज एक छोटी सी जो सुई है, सुई जो बनती है, हमको बहुत छोटी सी सुई लगती है, बट सुई जो बनाता है और जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो कितना बड़ा होगा, तो
1: जी
0: मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कम नहीं होती कहीं पे भी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। अगर आपने
1: जी
0: कुछ ठान लिया है तो डेफिनेटली हर फील्ड में टॉप लेवल तो होते ही होते हैं।
1: जी
0: तो अगर किसी भी इंसान को अपना करियर चूज करना है तो उसको बहुत ही स्ट्रांगली करना चाहिए। अगर वो हमेशा कंफ्यूजन में है या दो पैर पे नाव रख रहा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मुझे लगता है।
1: जी
0: और फिर तो ऐसा होता है कि आपको कहते हैं ना कि वो एक भेड़ के पीछे 100 भेड़ चलती हैं, तो वो आपको पहली वाली भेड़ बनना है या उसके पीछे वाली बनना है,
1: जी
0: क्योंकि पहली भेड़ तो जो होती है वो रास्ता डिसाइड करती है कि किधर जाना है,
1: जी
0: बाकी तो 99 फॉलो करती है ना,
1: जी
0: तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहली भेड़ बनना है या वो भेड़ के साथ चलना है।
1: जी आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रेरणादायक बातें बता दी हैं।
0: जी
1: राकेश जी, आज आपसे बात करके आपकी बांसुरी की ये धुन सुनकर ऐसा लगा जैसे भागती दौड़ती दुनिया में सुकून के दो पल मिल गए हो। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और अपनी कला से हमें सराबोर कर दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आकाशवाणी और आपको भी कि आपने आज यहाँ पे मुझे मौका दिया
1: जी
0: कुछ बातचीत करने का,
1: जी
0: और सभी श्रोता लोगों को बहुत बहुत मेरा प्यार और धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी युववाणी कार्यक्रम में। अब दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त राजनंदिनी को। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम युववाणी। बैतूल के युवा बांसुरी वादक राकेश सातनकर से उनके बांसुरी वादन से जुड़े अनुभव पर राजनंदिनी विश्वकर्मा की अनौपचारिक बातचीत। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाने का। तो पेश कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे हरीश कुमार के गाए कुछ भक्ति गीत। शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत। आज शाम 7:20 पर कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसमें आज की बात होगी मोबाइल का प्रयोग सीमित रखें, इस विषय पर सामयिक कृषि चर्चा होंगी, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली की उन्नत खेती कैसे करें इस विषय पर श्रृंखला में बातें होंगी खेती किसानी की, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव।

सेहत की बात गीत के साथ। ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य सरिता। श्रोता आज रात 9 से 10 तक सुनिएगा विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से, और रात 10 हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम मेरी पसंद, और रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में केएल सहगल के गाए चंद नगमे। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम, और आइए डालते हैं अब एक नज़र हमारी कल की सभा के कार्यक्रमों पर। कल की सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:55 पर, जिसमें 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन, और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति ए हरिहरन और साथियों के स्वरों में।

लोक रंजनी लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 6:45 पर और 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम यादों के झरोके से। सुबह सवेरे ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:50 पर और सुबह 8:30 पर आकाशवाणी केंद्र भोपाल से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। कल सुबह 9 से 10 तक सुनिएगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से और 10 आकाशवाणी केंद्र भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। उमंग NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा कल सुबह 10:05 पर और 10:35 पर सुनेगा कार्यक्रम महिला जगत जिसमें कल बात होंगी महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगार विषय पर। साथ ही मुलाकात होगी गृह उद्योग और महिला उद्यमिता विषय पर महिला उद्यमी आजीविका मिशन प्रतिनिधि से बातचीत और साथ ही सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सुबह 11 से शाम 5:30

30 मिनट तक आप सुनेंगे विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से, और कल शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा युवावाणी, जिसमें बात होगी पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीखे इस विषय पर। कार्यक्रम में सेगमेंट में होंगे खेल परिक्रमा, स्तंभ में जानेंगे सप्ताह का इतिहास और सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं कल शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम माटी के स्वर, और 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत सब रस। ये कार्यक्रम होगा कल शाम 6:50 पर, और 7:20 पर हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम होगा किसान वाणी। इसके अंतर्गत कल कार्यक्रम होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएँ इस विषय पर आप बात करेंगे श्री रविंद्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश से। गाने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:00 और 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो के हम सफर। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम होगा कल रात 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में मेहंदी हसन के गाय संत नगमे। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधली। कार्यक्रम से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरीश कुमार के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोधूली आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश कुमार के गाए ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोधुली आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

गोधुली में अभी आप सुन रहे थे हरीश कुमार के गाए ये भक्ति गीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाड़ी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, और सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेगी। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन इन नंबर 07142324722 या 231944 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 दिन गुरुवार शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 234722 या 231944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना, और शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सपने के इस गीत के साथ जिसे गाया है हेमा सरदेसाई और साथियों ने।

जावेद अख्तर का लिखा और ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आपने सुना फिल्म सपने से। और श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म विरासत से अगला गीत, जिसे संगीत दिया है अनु मलिक ने, बोल जावेद अख्तर के हैं और इस गीत को गाया है कुमार सानू और चित्रा ने।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 103.1 MHz और आपने अपने रेडियो दोस्त संदेश करतकर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब अगला गीत फिल्म जोधा अकबर से।

जावेद अली का गाया ये गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीत दिया था ए आर रहमान ने। बोल जावेद अख्तर के थे और फिल्म जोधा अकबर से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही संपन्न हुआ। FM वेव 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सबरस। जैसा कि श्रोताओं आपको ज्ञात है कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में, आइए लेते हैं कार्यक्रम में अब सबसे पहले भक्ति रस का आनंद।

करके वादा भी अगर आप नहीं आएंगे, नाम बदनाम जमाने में वफा का होगा। शायर खुर्शीद हिलोरी के लिखे ये कलाम अब हम आप तक पेश कर रहे हैं, जिसे गाया है मेहंदी हसन ने।

मैं दिया सन की गाई। अभी आपने ये गज़ल सुनी और श्रद्धा कार्यक्रम सब रस में। अब आइए सुनते हैं एल्बम जानम से ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

उदित्य नारायण का गाया गीत अभी आपने सुना एल्बम जानम से। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सबरा सब यही संपन्न हुआ। एफएम पे 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचार के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रघुवीर सिंह बिट्टू का लेख। आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे हैं तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम। काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त। 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रुपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीफ 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा। 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रेल राज्य मंत्री रघुवीर सिंह बिट्टू का एक लेख साझा किया है। इस लेख में पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशनों और बेहतर रेलवे नेटवर्क से हो रहे विकास का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है और क्षेत्र में अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भीतर दौरों में अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया है और अधिकारियों को बिना नई खरीद के इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की उनकी अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। डॉक्टर यादव ने सभी मंत्रियों अधिकारियों को भी कम वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
1: प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे हालात बने हैं ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है। मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है कि आपकी गाड़ी घोड़ा कम से कम आप डीजल पेट्रोल का वापरो, सामूहिक रूप से चलाओ। इस समय इसी बात की आवश्यकता है कि हमारे लिए विकास भी जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई के बीच UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के अधिकारी की यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत UAE से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 43 साल में किसी भारतीय PM की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर अहम बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस सीजन में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीज को लेकर हुई है। सरकार इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल खरीदेगी।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। CBSE ने आज 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। प्रदेश के भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 5.77% कम रहा और यहां केवल 79.4

0: 43% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सके। तिरुवनंतपुरम में रीजन 95.62% के साथ देश में सबसे आगे रहा। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट डिजी लॉकर या उमंग ऐप के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के मुंगवाड़ी से लाडली बहना योजना के 36वें किस्त जारी किए। डॉक्टर यादव ने प्रदेश के 1,25,00,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। जून 2023 में शुरू इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
2: 4,11,000 से अधिक हमारी मध्यम श्रेणी की इकाइयों में भी माता बहनों को हमने संचालन करने के लिए उनको मौका दिया। आज 34,00,000 महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से भी जोड़ा, ताकि दूध का उत्पादन करते करते घर के अंदर पशुपालन करते हुए जो भी पशु पाल सकते हैं आप अपने घर में दूध का उत्पादन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है।
0: महाराष्ट्र में पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बब्बेवाड़ी इलाके में गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे कल रद्द कर दिया गया था। सरकार ने CBI को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय छात्रों को मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड करें, साथ ही हर छात्र को स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। इस देश के बेहतरीन शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि 31 मई तक छात्रावासों में किचन नहीं बने तो सीधी कार्रवाई होगी। 15 मई से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगी, जिसमें 4,000 ओबीसी युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। दिल्ली में पढ़ रहे ओबीसी छात्रों को 10,000 रूपये महीना सहायता योजना का भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। सरकारी काम में नवाचार और बेहतर जनसेवा के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार में 1,00,000 रूपये की राशि मिलेगी। 15 जुलाई 2026 तक awards.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई को ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में संपर्क अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर लगाएगी। IPL में अब से कुछ देर बाद रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अशोकनगर में जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया गया। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात थाना प्रभारी और NHI अधिकारियों ने पनवाड़ी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। अपराधों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में जनगणना कार्य को सुचारू और असरदार बनाने तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहडोल जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत, तालाब, बोरी, बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। आगरमालवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 552G सहित जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में 18 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 4,537 किसानों से 23,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। नीमच में कलेक्टर कार्यालय परिसर में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

0: आयोजित किया गया। देवास जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी और 23 जून को वापस लौटेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया रेल राज्य मंत्री रघुवीर सिंह बिट्टू का लेख। आधुनिक स्टेशनों से पंजाब में खुल रहे तरक्की के नए दरवाजे। प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम। काफिले में गाड़ियां 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों को भी निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना की 36वीं किस्त। 125 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचे 1,835 करोड़ रूपए और किसानों को बड़ी राहत। खरीद 2026-27 के लिए 14 फसलों का MSP बढ़ा। 2,60,000 करोड़ का होगा भुगतान। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FMV 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।

नमस्कार किसान भाइयों, मैं बलराम सिंह रघुवंशी आपका किसान मित्र। भाइयों, आज हमारे ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और निरोग होंगे और खुशहाल होंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, मौसम गर्मी का बहुत अपने पूरे सुमार पे है और गर्मी का जो लुत्फ है हम अच्छे से उठा भी पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण हम उम्मीद रखते हैं कि आगे मौसम में बदलाव और मौसम की उम्मीद पानी से, ठंड से अच्छी बेहतर रहेगी। और अब समय थोड़ा मशक्क़त का है किसान भाइयों के लिए, खाद भरना, बीज भरण करना, बीज उपचार की व्यवस्था बनाना, यूरिया डीएपी व्यवस्था बनाना और सारी चीज़ों की व्यवस्था के साथ साथ अपना खेती किसानी के कामों को सुचारू रूप से कार्यरत करना। खेत बनाने से बेहतर और साथ में काम करना, खेत को पलटाना, प्लाऊ करवाना जरूरी हो गया है। तो किसान भाइयों, आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में आज हम अपने समसामयिक चर्चा मोबाइल का उपयोग सीमित रखे, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, आज रोज़मर्रा की सबसे मुख्य ज़रूरत और सबसे ज़रूरी चीज़ देखा जाए तो मोबाइल है। एक व्यक्ति के लिए मोबाइल, एक बच्चे के लिए मोबाइल, एक वर्ष के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति तक के लिए मोबाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। वो एजुकेशन स्तर पर बोलो या फिर चिकित्सा संबंधी योजनाओं के लिए, समय पास करने के लिए या आवश्यकता के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो गया है मोबाइल का उपयोग। फिर भी हर डॉक्टर कहता है, हर इंसान को, व्यक्ति को समझना चाहिए कि उपयोग सीमित रखना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना हमें जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है उतना ही हमें नुकसान भी पहुंचाती है। इसके दुरुपयोग भी होते हैं जितनी इसके फ़ायदे मिलते हैं। मोबाइल का उपयोग कम करने के लिए या सीमित रखने के लिए हमें डिजिटल वेलविंग का उपयोग करना चाहिए, नोटिफिकेशन बंद रखें और सोने से पहले लगभग 1.25 घंटे पहले ही मोबाइल का से दूरी बना लेना चाहिए, या मोबाइल को कहीं ड्रॉज में या फिर किसी टेबल पर या किसी और अन्य जगह पर रखकर ही हमें सोना चाहिए। साथ ही और भी कई चीज़ें हैं जिसमें बदलाव करना बहुत आवश्यक है। अन्य टिप्स के लिए हम जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो बैकग्राउंड या फिर हमें परेशान करते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह डालते रहते हैं, तो इन नोटिफिकेशन को भी जो संदेश होते हैं इन्हें बंद करके रखना चाहिए। बेहतर नींद अत्यंत आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है। चलो आइए जानते हैं इस बारे में मोबाइल का उपयोग कम और सीमित कैसे करें। नो फोन नो जोन, आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि इसका विधि का उपयोग कई जगह किया जाता है कि ऐसी जगह जैसे बेडरूम में, डाइनिंग में या फिर हॉल में हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, या घर के अंदर हम मोबाइल का

जो कम से कम करेंगे, सीमित करेंगे, स्क्रीन टाइमिंग कम रखेंगे, डार्कनेस कम रखेंगे, जिससे होने वाले नुकसान या प्रॉब्लम्स, समस्या, परेशानी ना उत्पन्न हो। सोने से लगभग, जैसे मैंने कहा, 1.25 घंटे पहले इसको दूर रखें अपने आप से। पुराने तरीके अपनाएं, अलार्म लगाए घड़ी में। टाइम देखने से, वक्त देखने से, समय देखने से अच्छा है मोबाइल को उपयोग ना करके घड़ी पहनना शुरू कर दें हम अपना। हॉबी अपनी जो जो अपने शौक है उनको फिर से उपयोग करें, मतलब पूर्ण रूप से बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, आउटडोर गेम्स जो होते हैं इनको सुचारू रूप से संचालित करें, क्योंकि आज के दौर में हम बच्चों को समय दे नहीं पा रहे, अपने आप को समय दे नहीं पा रहे। स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत समय और कसरत बहुत ज़रूरी हो गई है, इसलिए हॉबी होना बहुत ज़रूरी। एक सुबह 1.25 घंटे योगा, प्राणायाम चीज़ों को देना ज़रूरी है। उठते से मोबाइल नहीं उठाना है आपको, पहले अपने आप को समय देना है। वैसे ही शाम को या फिर बच्चों के साथ अपना खेलने का समय निकालें और रचनात्मक कार्य करें, पेंटिंग है, किताबें पढ़ना, खेलने का सामान वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने बताया, ऐप का इस्तेमाल जो ज़रूरी है उतने ही ऐप का इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता है, अन्य चीज़ों का उपयोग ना करें ज़्यादा ऐप्स का। जैसे मोबाइल्स का उपयोग कम करने के लिए से फ़ायदा ये भी होता है कि मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति एक शरीर के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, जो जीवन की एक बहुत अहम कड़ी है, जिसने वह अपने आप को निकाल नहीं पाता है मोबाइल से व्यक्ति, जो वो मानसिक चिड़चिड़ापन परेशानी से घिरा रहता है कि मुझे कोई मैसेज आया है, मुझे कोई जानकारी आई है, इस चीज़ में फंसा रहता है। आज बात करें मोबाइल की, तो बिजनेसमैन हो, छोटे मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, या कोई सरकारी कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, सभी लोग अपना, मतलब एक वर्ष के व्यक्ति, बच्चे से लेके 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए मोबाइल बहुत आवश्यक हो गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इसका उपयोग तो सभी लोग कर रहे हैं, पर सीमित रखना और कम करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये इतनी आवश्यकता नहीं कि जो हमारे शरीर के साथ दुष्प्रभाव पैदा करे, आँखों के साथ परेशानी या रोग पैदा करे। और छोटे छोटे उम्र के बच्चे आज इसके आदि हो चुके हैं, पढ़ने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, अपने गेम्स देखने के लिए, इन चीज़ों की आदि हो गए हैं। तो ज़रूरी हो जाता है शिक्षकों को, हमारे घर के माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उन बच्चों को समझाना कि उपयोग करिए। एक ऐप का जैसे टाइम बना दिया जाए, उस समय निर्धारित किया जाए कि 1 घंटे यूट्यूब चलेगा, 1/2 घंटे इंस्टा चलाए, कॉलिंग के सीमित रहे समय, इन चीज़ों के दायरे बांधना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन फ़ोन सेटिंग्स के माध्यम से हम फ़ोन का स्क्रीन टाइमिंग और ऐप्स के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। और शरीर से जितना हो सके, जैसे सभी लोग जानते हैं कि किसान भाइयों, फ़ोन में एक रेज निकलती है, एक्स्ट्रा, मतलब जो किरणें निकलती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती, जो चीज़ें दिक्कत करती आँखों को, शरीर को, जो नेटवर्क होते हैं ये तरंगों पर चलते हैं। इसी तरह इसके शरीर से जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी, जितना कम नज़दीक रहेगा ये, उतनी ही आपके फ़ायदे की लिए सही रहेगा। शारीरिक फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आराम के लिए घड़ी का उपयोग कर लें, सोशल मीडिया के लिए पेपर हम पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, अधिकतर डू नॉट डिस्टर्ब का अपन यूज़ कर सकते हैं, साइन जो मोबाइल में उपयोग होता है। तो शौक़ अपने अपने फिर से शुरू कर सकते हैं, खेलने के, कूदने के, घूमने के, फिरने के, दोस्तों से मिलने के और टहलने जाने के लिए। तो ये ज़रूरी हो जाता है मोबाइल का जो उपयोग है, अगर हम सीमित रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत कार्यकारी होगा और हमारे उपयोग के लिए आएगा, हमारी ज़रूरत के लिए होगा। अधिक करेंगे तो हमारे शारीरिक और मानसिक समस्या के लिए कारण बन सकता है। तो मित्रों, आज हमारे कार्यक्रम में हम एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं, जो कि कल होने वाले कार्यक्रम 14 मई को इसका आकाशवाणी बैतूल लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे तक के मध्य किया जाएगा। सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश, विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्या और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वो दिनांक 14 मई 2026 को शाम 7:20 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के इन फोन नंबरों पर अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

तो फ़ोन नंबर है 07141-234-722 या 231-944। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 गुरुवार शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य 234-722 या 231-944। बैतूल का स्टडी कोड है 07141। तो श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। एक छोटा सा लोकगीत हम सुनते हैं, आइए।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना एक लोकगीत। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में हमारी भेंट वार्ता MSc एग्रीकल्चर वामन राव काटुलकर जी के जानकारी मिट्टी परीक्षण के संबंध में। नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ कृषि केंद्र और संचालक और MSc एग्रीकल्चर के गणित शास्त्री एग्रीकल्चर शास्त्री श्री वामन राव काटुलकर जी आज हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं इनके साथ अनुभव और जानकारियाँ। तो नमस्कार काटुलकर जी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम जिन फसलों को खेती में उगा रहे हैं, हमारे बैतूल जिले की मृदा के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे अधिक मात्रा में रेतीली मृदा, मध्यम रेतीली मृदा और कुछ कुछ स्थानों पर काली मृदा भी पाई जा रही है।
0: हाँ, ये मिट्टी की गुणवत्ता कई प्रकार के क्षेत्र में अपने यहाँ अलग अलग पाई गई है, जैसे काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेताली मिट्टी। तो इसकी मात्रा जैसे आपने तय की है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में 70% लगभग यहाँ पर रेताली ज़मीन है, जो प्राकृतिक भूमि से उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। तो इसमें क्या क्या बदलाव या सुधार या पोषक तत्व की व्यवस्था और कमियां, इसका निवारण, इस बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं?
1: इसमें सबसे पहले बताने वाली बात जो होगी कि हमारी मृदाओं में पौधों में पोषक तत्वों के आधार पर 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें H2O पानी, हवा और पानी प्रकृति से निःशुल्क मिल जाता है। उसके अलावा हमको पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, MN मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, कॉपर, क्लोराइड, बोरान, जिंक और फेरिक, इतने पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मृदा की संरचना के आधार पर रेतीली मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जबकि मध्यम मृदा में पोषक तत्व मध्यम मात्रा में पाई जाती है, जबकि काली मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी नई फसल उगाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारी मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को जांच लें और उसी के आधार पर फसलों को उनकी उपलब्धता के आधार पर उत्पादन के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर लें।
0: मतलब मृदा परीक्षण जरूरी है।
1: मृदा परीक्षण से हमें पूर्व में फसलों ने कितना पोषक तत्व ले लिया है, अभी हमारी जमीन में फसलों के लिए कितना पोषक तत्व बचा हुआ है, आने वाली जो फसल बो रहे हैं उसमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, इनका मैनेजमेंट करके ही यदि हम पोषक तत्व पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे तभी हम पर्याप्त मात्रा में पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे और हम उनसे उत्पादन की उम्मीद रख सकते हैं। यदि पोषक तत्वों की कमी होगी तो हम चाहे जितना भी अच्छी मेहनत कर ले, लेकिन हमको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा।
0: हाँ, भूमि की गुणवत्ता जैसे जानकारी हो जाए कि इसमें कमी है या अधिकता है, तो उस हिसाब से यूरिया, सल्फेट, मैग्नीशियम, DAP ये सभी चीज़ें डाली जाए, बिना मतलब डालने से कोई मतलब की बात नहीं।
1: आवश्यकता से अधिक हम जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करें, जैसे कि DAP है, यूरिया है, इनमें सभी में जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, लेकिन 46 के अलावा 54% अतिरिक्त पदार्थ है जो कि हमारे रासायनिक पदार्थ के रूप में है, जो हमारी मृदा की उर्वरता को नष्ट करते हैं। तो ऐसे जितने भी रासायनिक तत्व है उनमें सभी में किसी न किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है, जो हमारे जमीन में उपजाऊ जमीन में जो जैविक पदार्थ जो उपलब्ध है उनको भी नष्ट कर रहे हैं और पोषक तत्वों की कमी भी करते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे

0: या उत्पादन में धीरे धीरे उत्पादकता कम होते जा रही है।
1: तो वामनकर जी, आप जैसा कह रहे हो, इन चीज़ों की परीक्षण के बिना, भूमि परीक्षण के बिना आप उपलब्धता नहीं जान सकते कि क्या कमी है, क्या अधिकता है। और जो जमीन अपने बैतूल जिले में पाई गई है, इसमें कमी तो काफ़ी है, पर कुछ चीज़ों की अधिकता भी, जैसे जिंक ज़्यादा मिलता है, नेचुरल भूमि जो प्राकृतिक भूमि है, कई जगह फिर से पहली बार खेती हो रही है, अभी काफ़ी मात्रा में खेती की जमीन बढ़ गई है, इस बारे में।
0: जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे शरीर का एनालिसिस करता है, उसी के आधार पर दवाई देने की बात करता है, तो हमारे पास, हम मृदा में किन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसके कारण हम उनमें कितना पोषक तत्व देना है, कौन कौन से देना है, और उन पोषक तत्वों के अपने पर्सनल कौन कौन से काम होते हैं। जैसे एनपार नाइट्रोजन जब तक मैग्नीशियम के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा।

0: काफी मात्रा में खेती की जमीन बढ़ गई है, इस बारे में?
1: जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे शरीर का एनालिसिस करता है, उसी के आधार पर दवाई देने की बात करता है, तो हमारे पास हम मृदा के मृदा में किन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसके कारण हम उनमें कितना पोषक तत्व देना है, कौन कौन से देना है, और उन पोषक तत्वों के अपने पर्सनल कौन कौन से काम होते हैं। जैसे एन भार नाइट्रोजन जब तक मैग्नीशियम के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा मतलब वो कोशिका का निर्माण नहीं करेगा, और कोशिकाओं के समूह को ही मांस कहते हैं। इस प्रकार से बिना नाइट्रोजन के हम पौधों में मांस की मात्रा मतलब कोशिकाओं की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही पी फॉर फास्फोरस, हम जो डीएपी या राखड़ा या एनपीके के रूप में देते हैं फास्फोरस, ये कैल्शियम के साथ क्रिया करके ये फास्फेट के रूप में यानी हड्डी के रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से किसी भी पौधे में फास्फोरस हड्डी यानी ढांचे का काम करता है, जबकि एन फॉर नाइट्रोजन मांस का काम करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए पहले हड्डी का ढांचा और फिर मांस होना चाहिए, ऐसे पौधों में भी पहले ढांचा हो और उसके बाद में सेल कोशिकाओं का हो। इस प्रकार जब हम पौधे को तैयार करते हैं, लेकिन अकेले पौधे को तैयार कर लेने से काम नहीं चलेगा, उसको भी उत्पादन के हिसाब से पोटास की भी जरूरत पड़ेगी, सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी, एमएन मैग्नीज जो जरूरत है, ये सबसे ज़्यादा नमी को मेंटेन करने का काम करता है। तो एमएन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास किसी भी पौधे की प्रारंभिक वृद्धि यानी वानस्पतिक ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जबकि उसके बाद में नमी को मेंटेन करने के लिए, फूल और फलों की मात्रा बढ़ाने के लिए, बीजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, बीज को परिपक्व करने के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी एमएन मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, कॉपर, क्लोराइड, बोरान, जिंक और फेरिक की जरूरत पड़ेगी, जो हमको आवश्यकता के अनुसार पौधों को देना पड़ेगा। अदरवाइज हमने अक्सर देखा है कि हमारे बैतूल जिले में या सभी जहाँ पर भी हम खेती कर रहे हैं, हमारे पास अंतिम उत्पाद ये बच जाता है कि पौधों को हमने ग्रोथ के लिए तो पोषक तत्व दिए हैं, लेकिन जिस समय परिपक्वता होगी यदि उस समय पर हम पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो अंतिम उत्पाद दाने का बारीक होना, पतला हो जाना है, कम वजनी हो जाना है, ये बहुत सारे प्रभाव उसके ऊपर उत्पाद और उस प्रकार से उत्पादन में कमी आ जाएगी।
0: तो किसान भाइयों को विशेष सलाह के रूप में आप क्या सलाह देना चाहते हो, क्या रासायनिक उपयोग किया जाए या जैविक उत्पादन भी लिया जा सकता है आज के दौर में?
1: आज के दौर के हिसाब से आज की खेती समेकित खेती के नाम से जानी जाती है। समेकित मतलब समय के अनुसार, हमारे जमीन में जिस प्रकार से पोषक तत्वों की कमी हुई है, जिस प्रकार से हमने पूर्व खेती के हिसाब से जो कचरा या कार्बनिक पदार्थ होता था, हमने आजकल खेतों से पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ समाप्त कर दिया है। इस कारण हमारी जमीन में बिल्कुल पोषक तत्वों की मात्रा न्यूनतम होते जा रही है,
0: कमी आ रही है,
1: और इसी कारण से हमको किसी न किसी रूप में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और उस बढ़ाने के लिए हमने जिस प्रकार से रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया, तो हमने हमारी जमीन से जितने जैविक जीव जैसे कि केचुआ जो है हमारे जमीन में दिन भर में मतलब 24 आवर्स में 24 बार अंदर जाता है और 24 बार ऊपर आता है, तो इस प्रकार से वह रंध्र अवकाश भी बढ़ाता है जिससे हवा और वायु की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बढ़ती है और हमारे जमीन में पानी सोखने की ताकत और पोषक तत्व ग्रहण करने की ताकत बढ़ जाती है,
0: हवा पहुंचती है जो रोद रूप होता है उसमें जो
1: बिल्कुल
0: रंध्रावकाश उसके माध्यम से जाती है हवाएं, पानी और चीजों को जो आवश्यकता होती है,
1: तो वही वो स्पेस जगह होती है जहाँ पर हमारे पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो पाते हैं।
0: तो रासायनिक उपयोग के कारण या अपना डीएपी या यूरिया के माध्यम से क्या केचुए में कमी आती है?
1: बिल्कुल, हम जो रासायनिक पदार्थ के रूप में जो नेचर दे रहे हैं, जैसे कि हमने बात की यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, बाकी का 54% अन्य पदार्थ है। तो अन्य पदार्थ में जिस कंपनी के पास में जो फिलर के रूप में होगा वही उपयोग करेगा। मान लो कि मैं कंपनी है और मेरे पास यदि उस क्षेत्र में रेत की मात्रा ज़्यादा है तो मैं रेत की मात्रा मिलाऊंगा, और जब मैं रेत की मात्रा बढ़ाऊंगा तो निश्चित तौर से मेरे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और रेत की मात्रा बढ़ते जाएगी और जो कॉम्पैक्ट होकर जो है हमारे उत्पादन में पोषक तत्वों की कमी
0: आएगी। तो आज के दौर में क्या रासायनिक खेती के अलावा हम जैविक खेती को पूर्ण रूप से निर्भर कर सकते हैं?
1: पूर्ण रूप से तो विकसित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनकी प्रतिशत मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे जैविक खेती के रूप में यदि हम बात करें मतलब जीवों की पोषक तत्व उपलब्धता की बात करें तो हम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैविक पदार्थ जो वातावरण की नाइट्रोजन, फास्फोरस,

0: पोटाश को एब्जॉर्व करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है लेकिन इनकी उपलब्धता नहीं हो पाती है और यह हमको कई बार प्रकृति के ऊपर निर्भर करना पड़ता है,
1: करना ही पड़ेगा।
0: और दूसरा आता है जिसकी वजह से इसकी मात्रा ज़्यादा लगती है और ज़्यादातर हम इसका उपयोग जो है वो बीजोपचार के रूप में या सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में ही कर सकते हैं, यानी जीवो का उपयोग हम या तो बीजोपचार के रूप में करेंगे या फिर सॉइल ट्रीटमेंट यानी मृदा उपचार के रूप में ही करके हम सीधे जीवो को मृदा के अंदर पहुंचा सकते हैं।
1: जैसा कि आपने कहा, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट तभी होता है, उपचार तभी होता है जब उसके पास परीक्षण हो। परीक्षण के पश्चात ही उपचार की जानकारी मिलेगी कि जिंक की कमी है, सल्फेट की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो इस कमी को दूर करने के लिए परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: तो क्षेत्र विकास के हिसाब से क्षेत्र के जो कमियां हैं, कहाँ मिट्टी काली है, कहीं दोमट है, कहीं रेताड़ी है, तो इस हिसाब से हम कैसे जानकारी पा सकते हैं कि हाँ ये जगह पर इस चीज़ की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है।
0: नहीं, स्वाभाविक भाषा में जो है रेतीली मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जबकि मध्यम रेतल मिट्टी में कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिक्स होता है, जबकि काली मिट्टी में पार्टिकल्स मतलब कणों का आकार बहुत बारीक होता है, चिकनी मृदा होती है, इसलिए उसमें ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से घुलित अवस्था में पाया जाता है,
1: पोषक तत्व भी पूर्ण होते हैं।
0: हाँ, दूसरी सबसे बड़ी मेन बात आती है कि काली मृदा में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की ताकत होती है, जबकि रेतल भूमि मतलब जिसमें कणों का आकार बड़ा होगा उसमें से पोषक तत्व पानी हवा के कारण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो कई कारण ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे मृदा में हम किस प्रकार से पोषक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं ये हम पता कर सकते हैं।
1: जैसे पानी की बात की जाए तो काली मिट्टी में कम पानी पे भी काम चल जाता है और रेताड़ी मिट्टी में ज़्यादा पानी लगता है।
0: वो पानी की यदि अपन बात करें तो काली मृदा में रंध्र अवकाश बारीक होने के कारण उसमें पानी सोख के रखने की ताकत ज़्यादा होती है, जहाँ अधिक समय तक मतलब जहाँ पर लगभग काली मृदा में यदि हम सिंचाई के हिसाब से बात करें तो शायद वर्षा की ऋतु में हमको जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि शीत ऋतु में हमको लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर पानी देने की जरूरत पड़ती है काली मृदा में, जबकि ग्रीष्मकाल में हमको कम से कम एक सप्ताह के अंतराल पर पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसके पानी के सोखने के आधार पर। जबकि हम रेतल रेती भूमि की बात करें तो इसमें हर बार यदि हम सप्ताह में पानी नहीं दिए तो हम उत्पादन नहीं ले सकते।
1: जी, तो वामन राव जी, आज आपसे काफी चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर और काफी जानकारी प्राप्त हुई। मैं ये आखिरी सलाह आपसे लेना चाहूंगा, क्या बैतूल जिले के किसानों को रासायनिक की तरफ जाना चाहिए या जैविक खेती करना चाहिए?
0: किसान भाइयों, खेती के मामले में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि पोषक तत्व कहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध है, और हम एकदम से यदि किसी भी प्रकार के उत्पादन को मतलब पोषक तत्वों की उपलब्धता को यदि हम एकदम से हटाएंगे तो हमारे उत्पादन में एकदम से कमी आएगी। जैसे अभी रासायनिक पदार्थों की हम उपलब्धता तो हम कम मात्रा में हम अधिक पोषक तत्व दे देते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ में इनकी बहुत कम मात्रा होती है, जहाँ पे हमको रासायनिक पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में जरूरत पड़ती है वही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमको क्विंटलों में जरूरत पड़ेगी, जबकि जैविक पदार्थों की मात्रा हमारी ग्राम में और मिलीग्राम में पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यदि तीनों ही प्रकार से कॉम्बिनेशन करके यदि तीनों ही चीज जैव उपचार के रूप में कर सके तो जैविक खेती होगी, जैव उपचार यानी मिट्टी का परीक्षण भी कर सकते हैं, बीज का भी उपचार कर सकते हैं, कुछ राइजोबियम कल्चर जैसे ऐसे हैं जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का भी काम करते हैं, तो इस प्रकार से हम जैविक रूप से भी वातावरण के उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं।
1: जी,
0: कार्बनिक पदार्थ के रूप में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जितने भी कछुआ खाद, ये जितने भी प्रकार के खाद हम कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से तैयार करते हैं उनके भी हम मात्रा जमीन में उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि हम प्योर रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता को कम करके और हमारे पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ में और जैविक पदार्थ में कार्बनिक पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा कम जरूर पाई जाती है, लेकिन सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक पदार्थ में हम सिर्फ और सिर्फ जैसे नाइट्रोजन

0: फास्फोरस मैग्नीशियम किन्हीं विशेष पोषक तत्वों की ही पूर्ति कर सकते हैं।
1: समय समय पर अलग चीजें देना पड़ता है, समय आ गया जिंक देना है, समय आ गया सल्फेट देना है,
0: बिल्कुल
1: पोटेशियम डालना है,
0: बिल्कुल।
1: तो ठीक है वामनकर जी, आज आपसे बहुत अच्छी सलाह प्राप्त हुई है किसान भाइयों को, और अगले बार हम एक बार और चर्चा करेंगे। मुझे मालूम है आपके पास सलाह और जानकारी काफ़ी है संबंध में किसानी के, तो ठीक है साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे वामन राव काटुलकर जी से मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी, जो MSc एग्रीकल्चर है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने का समय है, हम एक छोटा सा एक लोकगीत बजाएंगे चिरंजीलाल यादव और उनके साथियों के स्वर में।

0: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सिरंजी लाल यादव और साथियों के स्वर में लोक भजन। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी एक जानकारी जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी ग्राम सभा में एक विशेष संजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा और सवालों के जवाब देने के लिए श्री रविंद्र सिंह, क्षेत्र अधिकारी रेशम विभाग मध्य प्रदेश, विषय विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित होंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा बैतूल जिले में रेशम पालन की जानकारी और योजनाएं। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 14 मई 2026 गुरुवार शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के इन नंबरों पर, फोन नंबरों पर बात कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर है 07141234722 या 231944। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 14 मई 2026 गुरुवार को शाम 7:20 बजे से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234722 या 231944। बैतूल का स्टडी कोड होगा 07141। तो किसान भाइयों, आप समय हो चुका है हमारी आपसे अनुमति लेने का। तो किसान भाइयों और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की समाप्ति की हमें अनुमति दीजिए। राम राम, जय जवान, जय किसान।
1: किसान वाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ। कार्यक्रम से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, यदि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है आप पौष्टिक खाना खाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आपके खाने में नमक, चिकनाई और मीठा सही मात्रा में हो और आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं। तरह तरह के फल और सब्जियां खाएं। ब्रेड, अनाज, नूडल्स और चावल जैसी चीज़ें खरीदते वक्त उनके पैकेट पर दी गई जानकारी पर ध्यान दें। छिलकेदार अनाज सेहत के लिए मैदे से बनी चीज़ों से बेहतर होता है। जहाँ तक खाने में प्रोटीन का सवाल है, अगर आप मांस मछली खाते हैं तो बगैर चर्बी वाला थोड़ा सा ही मांस खाइए और हो सके तो हफ्ते में 2-3 बार

मछली खाएं। कई देशों में शाकाहारी लोगों के लिए भी काफ़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें प्रोटीन होता है। और ये तो रही सेहत की बात, और अब सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, ज़्यादा मीठा और चिकना खाना खाने से मोटे होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए शरबत और कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय पानी पिए, कुछ मीठा खाने के बजाय ज़्यादा फल खाए। मांस, मक्खन, केक, चीज़ और बिस्कुट जैसी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ना खाएं जिनमें चिकनाहट होती है। खाना बनाने के लिए मक्खन, वनस्पति घी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिए जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ, और ये कार्यक्रम हम यूं ही जारी रखेंगे। और कार्यक्रम में एक सूचना आप तक पहुंचा दें। श्रोताओं, आकाशवाणी 8 जून 2026 को अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 8 जून 2025 से 8 जून 2026 तक पूरे देश के आकाशवाणी केंद्रों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं, नियमित श्रोताओं, शहर के जाने माने लोगों, साहित्यकारों और कलाकारों को शामिल किया जा रहा है। हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को आकाशवाणी बैतूल ने भी अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे किए हैं। 30 अप्रैल 1991 को बैतूल जिले में आकाशवाणी केंद्र से औपचारिक प्रसारण आरंभ हुआ था। तब से ही यह जनता के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अनवरत सेवारत है। आकाशवाणी एट द रेट 90 कार्यक्रम श्रृंखला के इसी क्रम में आकाशवाणी बैतूल द्वारा रेडियो के हम सफर कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे गुरुवार को रात 8:15 बजे FM 103.1 MHz पर प्रसारित किया जाता है। दिनांक 14 मई 2026 को इस कार्यक्रम में रात 8:15 पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले तथा सांसद बैतूल हरदा हरसूद श्री दुर्गादास उइके जी और माननीय विधायक आमला सारणी डॉक्टर योगेश पंडागरे अपने रेडियो से जुड़े अनुभव श्रोताओं से साझा करेंगे। श्रोताओं, इस रोचक बातचीत को 14 मई यानी कल रात 8:15 पर आप आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz तथा न्यूज ऑन AIR ऐप पर अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सुन सकते हैं। और श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम में सूचना और कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ। दोस्तों, खाने में ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो खाने की चीज़ें खरीदते वक्त पैकेट पर दी जानकारी देखिए कि उनमें कितना नमक है।

दोस्तों, आप जो खाते हैं उसका तो आपकी सेहत पर असर पड़ता ही है, लेकिन आप कितना खाते हैं वह भी बहुत मायने रखता है। खाने का पूरा पूरा मज़ा लीजिए, लेकिन उतना ही खाइए जितनी आपको भूख है। अगर खाना सही तरह से तैयार ना किया जाए तो या ठीक से रखा ना जाए गया हो तो तबीयत खराब हो सकती है। और कई शोध बताते हैं कि खाना खराब होने की वजह से आए दिन लोग बीमार पड़ते रहते हैं। तो अपनी सेहत का रखिए ख्याल और सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, ऐसे गीत के साथ कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ अब यहीं संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है साहित्य सरिता, बैतूल के जाने माने वरिष्ठ कवि सुनील पानसे दास का काव्य पाठ। संपादन और संयोजन है प्रवीण चौरे का।
1: कार्यक्रम साहित्य सरिता सुनने वाले सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बैतूल के जाने माने कवि सुनील पानसे दास जी। सुनील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: आज के अवसर पर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से जुड़ें और अपनी काव्य यात्रा के माध्यम से उन्हें साहित्य से जोड़ें।
2: जी प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साहित्य सरिता कार्यक्रम में मैं आपके बीच कुछ विषय रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे विषय आपके मन को छुएंगे। कुछ रचनाएं आपके बीच में रखता हूं कि राह चलते पथिक ने गुलाब के पौधे को देखकर कहा। राह चलते पथिक ने गुलाब से कहा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी खुशबू कितनी सुंदर है, तुम कितने मधुर हो, पर काश तुम में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। पथिक आगे बढ़ता है। राह चलते पथिक ने कोयल को देखकर कहा, तुम्हारा कंठ कितना सुरीला है, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, पर काश तुम काली न होती तो कितना अच्छा होता। पथिक पुनः आगे बढ़ता है। राह चलते पथिक ने सागर को देखकर कहा, तुम कितने विशाल हो, तुम्हारे अंदर कितनी गहराई है, तुम कितनी गहराई से युक्त हो, तुम्हारा ओर छोर पाना असंभव है, पर काश तुम खारे न होते तो कितना अच्छा होता। प्रकृति के इन तीनों उपहारों ने पथिक से कहा, हे पथिक, यदि तुम में बुराई देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। बुराई देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। हमें प्रकृति के ये अनुपम उपहार शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं, जीवन के कई स्थितियों को संभालने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की मुश्किलें हैं, हम दौर को भी देख रहे हैं, आकाशवाणी भी इतने वर्षों से ये देख रही है। हमें आकाशवाणी के बहुत सारे अनुभव मिले, आकाशवाणी के साथ में जुड़ने का, उसके साथ में अपनी प्रतिभाओं को निखारने का हमें बड़ा अवसर मिलता है। यह एक धागे में बांधकर, एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ने में नए लोगों को, नए लेखकों को, नई सोच को, नई चिंता को, नए विषयों को, नई पीढ़ी को आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं कि आइए और एक अच्छे पथ की ओर बढ़िए। ये आकाशवाणी जिस समय आज के युग में जो चीज़ें नहीं थी, उस समय से हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को लेकर चल रही आकाशवाणी, उसका हृदय से आभार। और इस बीच एक बेटियों के साथ जो स्थितियां बन रही है, बेटियां कभी भी हों, कैसे भी हों, लेकिन उन्हीं से परिवार, उन्हीं से संस्कृति, उन्हीं से सभी कुछ जीवित है और यह रहेगा। एक रचना के माध्यम से पुनः आपको जोड़ता हूं कि मुगालते में है शहर रिवाजों की बात करता है, मुगालते में है शहर रिवाजों की बात करता है, अरे कलियों को रौनता है और गुलाबों की बात करता है, अरे कलियों को रौनता है और गुलाबों की बात करता है। और बुजुर्गों से है रोशन, माता पिता धरोहर है परिवारों की, तो बुजुर्गों से है रोशन तेरा घर मेरा घर। बुजुर्गों से है रोशन तेरा घर मेरा घर। दरवाजा पागल है हिसाबों की बात करता है, मुगालते में है शहर रिवाजों की बात करता है। और कुछ चित्र देखिए कि रोज कमाता है जितना सब मैं खाने के नाम, 200, 300, 500 जो कमाता है, लेकिन आज जिस व्यसन में वो डूब रहा है, जिस व्यसन में वो जा रहा है, उस पर ये दो पंक्तियां देखिए कि रोज कमाता है जितना सब मैं खाने के नाम, और जरा सी पी क्या लेता है जमाने की बात करता है।

मुगालते में है शहर, रिवाजों की बात करता है। और इसी का चित्र पलटें, दरवाजे के भीतर आए हम तो दिन रात करता है मेहनत, दिन रात करता है मेहनत फिर भी घर संभलता नहीं, दिन रात करता है मेहनत फिर भी घर संभलता नहीं। बच्चा पेंसिल को रोता है और ये खजाने की बात करता है, मुगालते में है शहर, रिवाजों की बात करता है। और बेटियों के लिए कि खुशबुओं इतना ना फैलो, खुशबुओं इतना ना फैलो, माली की हद में रहो, हवाओं की नीयत में खोट है, हवाओं की नीयत में धोखा है, उड़ाने की बात करता है, मुगालते में है शहर, रिवाजों की बात करता है। और हमारी उम्मीद हमारी आशाएं कि मुंतजिर हैं नस्लें, मुंतजिर हैं नस्लें, थमेगी आंधियां अब तो, मुंतजिर हैं नस्लें थमेगी आंधियां अब तो, तूफान का अंदेशा है, चिरागों की बात करता है, मुगालते में है शहर, रिवाजों की बात करता है, मुगालते में है शहर, रिवाजों की बात करता है। हमें कई चीज़ों को, कई परंपराओं को, कई पीढ़ियों को देखते हुए हम आ रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों की ओर बहुत बारीकी से अपने घर पर, परिवार पर नज़र रखना ही होगा। तब मैं कहता हूँ कि बेटियां आज वो बेटियां भी नहीं हैं जिन्हें रौन दिया जाए, जिन्हें घर में बंद करके रख दिया जाए, वो आज आसमान चाहती हैं। आज की बेटियां मेरी नजर में जिस तरह से है कि यदि एक समय कहा गया कि पुरुष प्रधान देश की नारी कहती है कुछ काम करूंगी, मानस में जलती चिंगारी, व्याप्त तमस के प्राण हरूंगी, रुदन किया करता है अब भी पनघट पर भाभी का कंगना, पतिव्रत धर्म निभाती फिर भी माथे से मांगों का हरना, बाजारों में बोली तन की ममता भूखी है मरहम की, घर की लज्जा बिक जाती है जल तंदूरों में सिक जाती है, आज उठी है समर को नारी कहती है प्रण पाषाण करूंगी, पुरुष प्रधान देश की नारी कहती है कुछ काम करूंगी। तो वही पुरुष प्रधान देश की नारी आज नारियों से कहा जाए कि पुरुष प्रधान देश है तो वो कहती है आज पुरुष प्रधान देश नहीं रहा, आज समानता का भाव है, आज बेटियां पुरुषों से कहीं आगे आकर पुरुषों को बराबरी का साथ देकर, सहयोग देकर वे आगे बढ़ रही हैं। बेटियां मेरी नज़र में आज दुर्गा हैं। और दुर्गा पर एक रचना, आम घरों में जिस तरह होता है, मैं आपके बीच में एक दुर्गा रचना रखना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने, मुझे आशा है आपके आशीर्वाद मिलेगा। कि वह तुम्हारा अट्टहास यूं लगता है जैसे मुझे अबला ही नहीं अपितु भोग्या समझकर जलील करना। वह घरों में अक्सर होता है, तुम्हें क्या, इस तरह से जो झिड़कियां मिलती हैं वह कहीं ना कहीं पत्नी को, बेटी को, माँ को, एक नारी को विवश करती है। कि वह तुम्हारा अट्टहास यूं लगता है जैसे मुझे अबला ही नहीं अपितु भुग्या समझकर जलील करना। वह तुम्हारा मुंह बिचका कर झिड़क देना किसी निरअपराध को सजा देने से कम भी तो नहीं, मगर मगर सुनो और महसूस कर सकते हो तो करो, अब वह दिन भी नहीं, अब वह दौर भी नहीं, अब वैसी सहन शक्ति वाला माहौल भी नहीं, अब वो व्यवहार भी नहीं बचा जो सोचते हो शायद तुम, एक औरत जो दासी थी अब वह भी नहीं, केवल उपभोग की वस्तु भी नहीं, वह बन चुकी है अब सब सहते सहते दुर्गा। उठाकर नजरें, तान कर सीना, मिलाकर कंधे से कंधा तुम्हारे साथ चल रही है, पर ध्यान रखना कि अब वह दुर्गा है, दुर्गा है, दुर्गा है। आशा है आपको यह दुर्गा रचना पसंद आई होगी। और इसी के साथ एक आशावाद की रचना, जहां बेटियां सक्षम हो रही है, बेटियां समर्थ हो रही है, परिवारों की मान मर्यादा का एक बड़ा संबल आर्थिक रूप से भी आज बेटियां हैं, लेकिन जीवन

0: कि मानव मानव के अंतर में, अंतर यानी हृदय, मानव मानव के अंतर में अंतर कहीं न दिखा, सार जगत का एक बिंदु पर मिल जाना ही सीखा। छद्म छलावे से सुमन की गंधन बदली जाती और दसों दिशाओं में पूरब की आभा पहले आती, तो पथ विहीन कर कंटक से निश्चल चले अकेली, राह नवेली चल पकड़ तू राह नवेली। और अंतिम बंद देखिए कि सूर कबीरा रहिमन तुलसी दिनकर और बिहारी अलग अलग पंथों से होकर गुजरी राहे सारी, शून्य अणु परमाणु व्योम व्यापक यह संसार, और है क्षणिक जीवन की सांसें उस पर दंभ अपार, है क्षणिक जीवन की सांसें उस पर दंभ अपार, उठो बिखेरे धन्य धरा पर किरणें उजली उजली, राह नवेली चल पकड़ तू राह नवेली। यह आशावाद की एक रचना आपके बीच रखी और आकाशवाणी के लिए मैं आपको सुनील पानसे दास बैतूल से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आशा है कि साहित्य सरिता का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, वंदे मातरम।
1: श्रोताओं, आज के साहित्य सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बैतूल के जाने माने वरिष्ठ कवि सुनील पानसे दास की रचनाएं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र प्रवीण चौरे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम साहित्य सरिता में अभी आप सुन रहे थे बैतूल के जाने माने वरिष्ठ कवि सुनील पानसे दास का काव्य पाठ, संपादन और संयोजन प्रवीण चौरे का था। FM वेव 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
1: ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट

0: प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

0: से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली

0: बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए, कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए।

एक दूजे के लिए, ये था फिल्म का नाम और आनंद बख्श के लिखे बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म कभी कभी से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत। आपके लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध।

0: करते करते
1: छाया गीत
0: लग जा गले।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
0: इश्क

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए। फिल्म चांदनी से ये गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, शिव हरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे कोरा कागज से, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

0: आदत से मजबूर।
1: बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं थे।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बेनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बेनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बेनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थी।

बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने बीपीओ में एचआर की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी लेकिन ए.आर. रहमान के पास नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए.आर. रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

सलमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

0: वेनी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो वेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है।
1: देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको कभी वर चढ़ने लगा थोड़ा।

बीनी दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उनके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

रीने दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते

हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

विनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसकी गवाह तो

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं।

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मेरी पसंद का। और फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में हम अपनी पसंद के गीत आपको सुनवा रहे हैं और सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म लाल पत्थर से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

लाल पत्थर, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे संगीत से संवारा था जय शंकर जयकिशन ने। बोल हसरत जयपुरी के थे और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी पसंद में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म धरती कहे पुकार के इस फिल्म से हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। बोल मजरू के हैं और इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गया गीत अभी आप इसे सुना, फिल्म धरती कहे पुकार के से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अपनी पसंद से फिल्म पराया धन से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म पराया धन से ये गीत। और श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया 103.1 मेगा हर्ट्स और आप अपने रेडियो दोस्त संदेश खड़कर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया, फिल्म जीवन मृत्यु से। और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
1: कि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, हो सकता है कि वो शादी के बाद शराब छोड़ भी देता।

जीवन मृत्यु इस फिल्म से अभी आपने श्रोताओं ये गीत सुना और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आया सावन झूमके से ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म काजल से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया।

साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने। फिल्म गुमराह से ये गीत आप सुन रहे थे और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी पसंद अब यही संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम से अपने रेडियो हम सफर संदेश कड़तकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। FM वेव 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं KL सहगल के गाए ये नगमे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं केएल सहगल के गाए ये नगमे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं KL सहगल के गाए ये नगमे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं केएल सहगल के गाए गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। और कार्यक्रम में एक सूचना आप तक हम पहुंचा दें, आकाशवाणी 8 जून 2026 को अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष में 8 जून 2025 से 8 जून 2026 तक पूरे देश के आकाशवाणी केंद्रों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं, नियमित श्रोताओं, शहर के जाने माने लोगों, साहित्यकारों एवं कलाकारों को शामिल किया जा रहा है। हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को आकाशवाणी बैतूल ने भी अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूर्ण किए हैं। 30 अप्रैल 1991 को बैतूल जिले में आकाशवाणी केंद्र से औपचारिक प्रसारण आरंभ हुआ था। तब से ही यह जनता के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए क्षेत्र में अनवरत सेवारत है। आकाशवाणी एट द रेट 90 कार्यक्रम की श्रृंखला के इसी क्रम में आकाशवाणी बैतूल द्वारा रेडियो के हम सफर कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे गुरुवार को रात 8:15 बजे FM 103.1 MHz पर प्रसारित किया जाता है। दिनांक 14 मई 2026 यानी कल इस कार्यक्रम में रात 8:15 पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले तथा सांसद बैतूल हरसूद श्री दुर्गादास उइके जी और माननीय विधायक आमला सारणी डॉक्टर योगेश पंडागरे अपने रेडियो से जुड़े अनुभव श्रोताओं से साझा करेंगे। श्रोता, इस रोचक बातचीत को 14 मई यानी कल 2026 को रात 8:15 पर

आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz तथा न्यूज ऑन AIR पर अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और कार्यक्रम में सुगम संगीत में आइए सुनते हैं अगला नगमा KL सहगल के आवाज़ में।

केएल सहगल के गाए नगमे अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सीमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों

0: किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurgaon, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating